सुप्रभात श्रोता साथियों, सुबह के सुनहरे सफर में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूँ साथियों आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ इस ताजगी से भरी सुबह में हमारे दिन के सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नए सपनों की किरण लेकर आती है, और हम भी चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भी हो ज्ञान, प्रेरणा और मधुर संगीत के साथ में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की, जहां हर पल होगा खास, कुछ नया सीखने वाला और कुछ मन को छू जाने वाला, सिर्फ सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो पर। साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना, दिन की शुरुआत हो प्रभु के नाम से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़े गीतों को, जो आपके मन को शांति दे। तो आइए साथियों, ईश्वर की वंदना के साथ अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। इसी के बाद सुबह 6:30 पर होगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है और उनकी मेहनत से ही जीवन की थाली सजती है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं साथियों खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह को, ताकि खेतों में हरियाली बढ़े और किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिले। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। सुबह 7 बजे श्रोता साथियों हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, नन्हे मुन्ने श्रोता साथियों के साथ जहां होंगी रोचक कहानियां और ढेर सारी मस्ती। यह कार्यक्रम बच्चों की दुनिया को ज्ञान और संस्कार के रंगों से सजाता है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं, और मेरे साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। साथियों, इसी के बाद हम रुक करेंगे सुबह 7:30 पर, आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही देश की असली शक्ति है। इस कार्यक्रम में मिलेंगी करियर से जुड़ी जानकारियां और नए विचारों को मंच, ताकि हर युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर, और मेरे साथ होंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों सुबह 8 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सच्चा स्वराज, क्योंकि स्वराज केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता का संदेश भी है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। इसी के बाद दोस्तों हम रुक करेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास और परंपराओं की ओर। लोक संगीत में बसती है हमारी मिट्टी की पहचान, तो तैयार हो जाइए साथियों ढोलक, बांसुरी, मंजरी की मधुर धुनों पर झूमने के लिए कार्यक्रम लोक संगीत में। इसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 8:30 पर। इसी के बाद दोस्तों हम फिर से बढ़ेंगे सुबह 9 बजे हमारे अगले खास और रंगों से भरे कार्यक्रम घूमर की ओर, क्योंकि साथियों राजस्थान की संस्कृति में घूमर केवल एक लोक नृत्य नहीं बल्कि नारी की खुशी, सम्मान और परंपरा का सुंदर प्रतीक है। इसी परंपरा और नारी शक्ति को समर्पित है हमारा यह विशेष कार्यक्रम घूमर, जहां महिलाओं से जुड़ी बातें, उनकी प्रतिभा, अनुभव और जीवन की प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचाई जाती है। इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक सुबह 9:30 पर। तो श्रोता साथियों, जैसा कि रूपरेखा कार्यक्रम की आप जान ही पा रहे हैं, अब समय है सीधे आपसे जुड़ने का और आपकी बात सुनने का, कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, जहां आप सभी सुनेंगे आपकी राय, आपके अनुभव और समाज से जुड़ी बातों को। इसी के आगे साथियों दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो है सिर्फ आपके नाम। इस कार्यक्रम में बजेंगे वही गीत जो आपके पसंदीदा होंगे। आप अपनी फरमाइश और संदेश के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों जुड़े रहिए सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो के साथ में, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज ही है सबसे खास। तो श्रोता साथियों, यह तो थी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्य

0: आज के सुविचार।
1: जब सागर का जल वाष्प बनकर उड़ता है तब वो हमें दिखाई नहीं देता, मेघ उस जल को अपने भीतर छिपा लेते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो जल सदा उनके भीतर छिपा रहे, परंतु जब वायु का वेग उन्हें उड़ाकर किसी पर्वत से ले जाकर के टकरा देता है तब उन मेघों को बरसना ही पड़ता है, क्योंकि यही नियति है, यही प्रकृति है, क्योंकि जल को सागर में जाकर मिलना ही है। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम सत्य अपने मन के मेघों में चाहे जितना छिपाने का प्रयास कर लें, परंतु समय की आंधी उसे वास्तविकता के पर्वत से ले जाकर के टकरा कर हमारे समक्ष ले ही आती है, जिस भय के कारण आप सत्य को सामने नहीं लेकर आना चाहते। एक दिन वही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस भय का सामना करने की तैयारी नहीं की होती। इसलिए सत्य से भागे नहीं, उसे छिपाए भी नहीं, उसे स्वीकार करें, भविष्य की बड़ी विपत्ति से बच जाएंगे। कभी कभी आप सबके जीवन में एक ऐसी विचित्र समस्या अवश्य आती है कि शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाए। क्यों शक्तिशाली से विवाद करने से बचने के लिए आप मौन रह जाते? मानता हूं ऐसा करने से आप एक विवाद से बच जाते, एक संघर्ष से बच जाते, परंतु ऐसा बचाव एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। कैसे? हमारा मौन रहना अनजाने में उसका समर्थन बन जाता है और वो स्वयं को अधिक शक्तिशाली अनुभव करता है, और यहां से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं। तो इसका तोड़ क्या है, ये समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको विरोध करने से रोकती है। ये सामने वाले की शक्ति नहीं जो आपको रोकती है, ये आपके भीतर छिपा भय है जो आपको रोकता है। हाँ, कभी कभी भय आपकी सुरक्षा अवश्य कर सकता है, परंतु साथ साथ ये भी जानना आवश्यक है कि ये भय ही है जो आपको मौन भी रखता है। इसलिए अपने मन से भय को निकालें और खुलकर अनीति का, अन्याय का विरोध कीजिए, और फिर देखिएगा आपका मन कितना मुक्त, कितना हल्का।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कशिश पाराशर, स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर माता की चिंता भी है और हर बच्चे के स्वस्थ भविष्य की सबसे मजबूत नींव भी है।
1: बिल्कुल,
0: आज का हमारा कार्यक्रम का विषय है बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के सरल उपाय को लेकर। कहा जाता है श्रोता साथियों कि स्वस्थ बचपन ही उज्जवल भविष्य की पहली पहचान है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन आज का समय पहले जैसा नहीं रहा। बदलती जीवन शैली, भागदौड़ भरी दिनचर्या, बढ़ता प्रदूषण, पैकेट वाले खाद्य पदार्थ, मोबाइल और टीवी का बढ़ता उपयोग और खुलकर खेलने के जो घटते अवसर हैं, इन सब ने बच्चों की सेहत पर गहरा प्रभाव डाला है।
1: जी हाँ,
0: यही कारण है कि आज बहुत से माता पिता ये शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा बार बार सर्दी, खांसी, बुखार और संक्रमण का शिकार हो जाता है। अक्सर ऐसी स्थिति में हम तुरंत दवा की ओर ध्यान देते हैं, लेकिन श्रोता साथियों क्या कभी हमने ये सोचा है कि यदि बच्चे के शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली मजबूत हो तो वह कई बीमारियों से खुद ही लड़ सकता है। आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के क्या तरीके हैं और हम उन्हें कैसे अपना सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी होंगी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन शुरुआत में पहले सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के सरल उपाय क्या हो सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, जैसा कि आपने गीत से पहले कहा ही था कि यदि बचपन स्वस्थ होता है तो भविष्य भी मजबूत होता है, और एक तरीके से देखा जाए तो ये बात सत्य भी है श्रोता साथियों। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आज बदलते जीवन शैली के कारण हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर कई चुनौतियां खड़ी हुई है। देखते हैं कि बच्चे पहले की तरह घंटों तक नहीं खेल पाते हैं, मिट्टी से वे नहीं जुड़े हुए हैं, और घर का ताजा भोजन उन्हें पसंद नहीं आता है। इसके विपरीत श्रोता साथियों, वे डिजिटल दुनिया के आदि हो चुके हैं। उन्हें मोबाइल और स्क्रीन पर समय बिताना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं अंजलि जी कि बच्चों का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा है, जिसके कारण माता पिता चिंता में है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आज लगभग हर जगह हर घर में ये शिकायत सुनने को मिलती है कि मेरा बच्चा बार बार बीमार पड़ जाता है, कभी सर्दी तो कभी खांसी, कभी बुखार तो कभी संक्रमण। ऐसे में अधिकतर लोग दवाइयों पर ही ध्यान देते हैं अंजलि जी, लेकिन बहुत से कम लोग ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या केवल इलाज ही समाधान है, या हमें बीमारी आने से पहले ही बच्चों के शरीर को इतना मजबूत बनाना होगा कि वे स्वयं कई बीमारियों का सामना कर सके।
1: बिल्कुल कशिश, यही शक्ति होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये हमारी शरीर की वह प्राकृतिक सुरक्षा है श्रोता साथियों, जो वायरस, बैक्टीरिया और अन्य संक्रमणों से लड़ने में मदद करती है। यदि यह मजबूत होगी श्रोता साथियों, तो बच्चा केवल कम बीमार नहीं पड़ेगा, बल्कि अधिक सक्रिय, ऊर्जावान और खुश भी रहेगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी महंगी दवा या चमत्कारी टॉनिक से नहीं बनती। यह हमारे घर की रसोई, हमारी दिनचर्या, हमारी अच्छी आदतों और परिवार के सकारात्मक वातावरण से धीरे धीरे विकसित होती है।
0: बिल्कुल
1: यही बात आती है कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण क्या है। तो श्रोता साथियों, जब कोई बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इसके पीछे केवल मौसम या संक्रमण ही जिम्मेदार नहीं होते। कई बार हमारी छोटी छोटी आदतें भी बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देती है।
0: बिल्कुल
1: आज के समय में बच्चों की दिनचर्या पहले जैसे नहीं रही है। सुबह जल्दी उठना, बाहर खेलना, समय पर भोजन करने की जगह अब देर रात तक मोबाइल देखना, सुबह देर से उठना, जल्दी जल्दी कुछ भी खा लेना आम बात हो गई है, और ये धीरे धीरे बच्चों के शरीर पर असर डालती है। दूसरा कारण है असंतुलित खानपान। कई बच्चे कशिश घर के पौष्टिक भोजन की बजाय चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, पिज्जा और बर्गर जैसे खाद्य पदार्थ अधिक पसंद करने लगे हैं।
0: बिल्कुल
1: इस स्वाद में तो अच्छे होते हैं, लेकिन शरीर को पोषण नहीं दे पाते जिसकी उसे आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, ऐसे में श्रोता साथियों, अब यहाँ पर बात करते हैं कि स्वच्छता की आदतें रोगों से बचाने में कैसे मदद कर सकती है। तो साथियों, कई बार हम ये सोचते हैं कि स्वच्छता का मतलब केवल साफ कपड़े पहनना या घर की सफाई करना होता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अंजलि जी, वास्तव में स्वच्छता बच्चों को बीमारियों से बचाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। हम देखते हैं कि बच्चों को बचपन से ये सिखाना चाहिए कि खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है।
1: जी जी
0: दोस्तों, हमारे हाथों पर मौजूद अदृश्य कीटाणु भोजन के साथ शरीर में पहुँच कर कई बीमारियां पैदा कर सकते हैं, ऐसा हम अपने बच्चों को बताएं। बच्चों के नाखून समय समय पर काटना, रोज स्नान करवाना, साफ कपड़े पहनना, साफ पानी पीना और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है अंजलि जी।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी इसी तरह बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि कशिश, गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कुछ कारण होते हैं, साथ ही हम स्वच्छता की आदतों के बारे में जान पाए।
1: बिल्कुल,
0: यह बात आती है बच्चों के दैनिक आहार में कौन कौन से खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। श्रोता साथियों, एक पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन वैसा ही तन। यह बात बच्चों पर सबसे अधिक लागू होती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि बचपन वह समय होता है कशिश, जब शरीर तेजी से बढ़ रहा होता है, मस्तिष्क का विकास हो रहा होता है और अब शरीर अपने रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित कर रहा होता है। ऐसे में यदि भोजन संतुलित और पौष्टिक होगा तो बच्चों का शरीर भी मजबूत बनेगा।
1: जी,
0: आज की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कई बच्चे स्वाद को पोषण से अधिक महत्व देने लगे हैं। यदि उन्हें घर की दाल रोटी सब्जी या खिचड़ी दी जाए तो वे नाक सिकोड़ने लगते हैं, लेकिन चिप्स बर्गर और ये सारी चीजें खाने में उन्हें बड़ी खुशी आती है।
1: बिल्कुल,
0: ये आदत धीरे धीरे शरीर को कमजोर करने लगती है। इसलिए माता पिता को केवल बच्चों की पसंद नहीं बल्कि उनकी सेहत को भी प्राथमिकता देनी चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथियों में बच्चों के भोजन में रोजाना मौसमी फल जरूर शामिल करने चाहिए, जैसे कि आम, अमरूद, संतरा, पपीता, केला, सेब या जो भी फल मौसम में उपलब्ध हो। साथियों,
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि वे शरीर को जरूरी विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं। विशेष रूप से विटामिन सी युक्त फल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं अंजलि जी।
0: जी हाँ,
1: यही बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, सरसों, चौलाई और अन्य मौसमी सब्जियां बच्चों की थाली का नियमित हिस्सा होने चाहिए। इनमें आयरन, फोलिक एसिड और कई आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं साथियों, जो हमारे बच्चों के शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और इसी के साथ अगर बात करें तो दालें भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं अंजलि जी की दालें जैसे की चना, राजमा, लोबिया, सोयाबीन और अंकुरित अनाज जो होते हैं वो बच्चों को पर्याप्त प्रोटीन देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और साथियों प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार हम दूध, दही, छाछ और पनीर भी बच्चों के आहार में शामिल कर सकते हैं। इससे बच्चों की हड्डियों के साथ साथ उनकी संपूर्ण सेहत को भी फायदा मिलता है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से ये हम जान पाए कि हमें बच्चों के खान पान में किन किन चीजों को शामिल करने की जरूरत है। यही अब बात आती है कि माता पिता बच्चों में स्वस्थ जीवन शैली की आदतें कैसे विकसित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोता साथियों, बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए केवल समझाना काफी नहीं होता, उन्हें दिखाना भी पड़ता है। बच्चे किताबों से कम और अपने माता पिता को देखकर अधिक सीखते हैं। यदि घर के बड़े स्वयं स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे तो बच्चे भी धीरे धीरे वही आदतें अपना लेंगे। सबसे पहले परिवार में एक नियमित दिनचर्या बनानी चाहिए। समय पर उठना, समय पर भोजन करना और समय पर सोना, ये साधारण लगने वाली आदतें ही अच्छे स्वास्थ्य की नींव है।
1: बिल्कुल,
0: माता पिता को कोशिश करनी चाहिए कि दिन में कम से कम एक समय पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन करे। इससे बच्चों में अच्छे खान पान की आदत विकसित होती है और परिवार के साथ संवाद भी बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को रोज कुछ समय खुले वातावरण में खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। श्रोता साथियों, खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि शरीर को मजबूत बनाने, तनाव कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने का माध्यम है।
1: बिल्कुल,
0: आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती स्क्रीन टाइम की है। यदि माता पिता स्वयं हर समय मोबाइल में व्यस्त रहेंगे तो बच्चों से मोबाइल छोड़ने की उम्मीद करना कठिन होगा। इसलिए पूरे परिवार को मिलकर स्क्रीन के उपयोग के नियम बनाने होंगे।
1: जी हाँ अंजलि जी,
0: पर्याप्त नींद मिलना आवश्यक है। अच्छी नींद शरीर को आराम देती है, मस्तिष्क तरोताजा रखती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों, माता पिता को चाहिए कि वो भी इन सारी चीजों को अपनाएं ताकि बच्चे उन्हें देखकर इन सारी चीजों को अपने जीवन में अपना।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये कहना चाहेंगे कि बच्चों का स्वास्थ्य केवल आज की जरूरत नहीं है बल्कि आने वाले कल की सबसे बड़ी पूंजी है।
0: बिल्कुल
1: अंजलि जी, एक मजबूत शरीर और स्वस्थ मन किसी भी बच्चे को जीवन की हर चुनौती का सामना करने का साहस देगा। इसलिए बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना केवल बीमारी से बचने के प्रयास नहीं है बल्कि उनके संपूर्ण विकास में किया गया एक दीर्घकालिक निवेश है साथियों।
0: जी जी,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर हम बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, अच्छे स्कूल और बेहतर सुविधाओं का इंतजाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन कई बार वही छोटी छोटी बातें नजरअंदाज कर देते हैं साथियों, जो उनके स्वास्थ्य की असली नींव होती है।
0: बिल्कुल,
1: समय पर भोजन, पर्याप्त नींद, खुलकर खेलना, स्वच्छता का पालन करना, घर का पौष्टिक खाना खाना और परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते हुए समय बिताना, ये सभी श्रोता साथियों ऐसी अनमोल आदतें हैं जिन्हें कोई दवा या टॉनिक कभी नहीं दे सकती।
0: बिल्कुल, तो कशिश जैसा कि इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पाए कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए हमें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ दिले जी,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं कार्यक्रम से। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, पावर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। नमस्कार।

0: आई ने बोनू आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह या आपड़े नी कितली शांति मिले है जीनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है।
1: होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: सेहत नु राज हूँ है बोन।
1: असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात की शुरुआत पानी तकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह।
0: होवे सेहत है असली धन आपरो। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा।
1: होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है स्वामी विवेकानंद जी के विचार और आज के युवाओं को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि कशिश, भारत की युवा शक्ति को जागृत करने वाले महान संत, विचारक और प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। उनका जीवन और उनके विचार आज भी युवाओं को नई दिशा प्रदान करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास, साहस, चरित्र निर्माण, राष्ट्र सेवा और मानवता का संदेश दिया। आज का युग तकनीक प्रतिस्पर्धा और तेज बदलाव का युग है।
0: जी जी,
1: ऐसे समय में युवाओं के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। उन्हें सही मार्गदर्शन, सकारात्मक सोच और मजबूत व्यक्तित्व की आवश्यकता है।
0: बिल्कुल,
1: स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज भी युवाओं के लिए उतने ही प्रासंगिक है जितने उनके समय में थे। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही जानने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के विचार और आज के युवा के बारे में।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो बातें ढेर सारी होंगे आज के इस कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम कार्यक्रम का पहला गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के विचार और आज के युवाओं को लेकर। जैसा कि जागृति जी, हम सभी जानते हैं कि भारत एक युवा देश है। आज हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी ही है। श्रोता साथियों, युवाओं के पास ऊर्जा है, सपने हैं, नई सोच है और बदलाव लाने का साहस भी है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इन सभी बातों में सच ये भी है साथियों कि आज का युवा कई चुनौतियों से घिरा हुआ है। बेरोजगारी, मानसिक तनाव, सोशल मीडिया की लत, करियर की चिंता, प्रतियोगिता का दबाव और जीवन में सही दिशा का अभाव। जागृति जी, ये सभी समस्याएं युवाओं के सामने खड़ी हैं। ऐसे समय में यदि किसी महान व्यक्तित्व के विचार युवाओं को सही राह दिखा सकते हैं तो उनमें स्वामी विवेकानंद का स्थान सबसे ऊपर है।
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, उन्होंने केवल आध्यात्मिकता की बात नहीं कही है, बल्कि आत्मविश्वास, शिक्षा, अनुशासन और मानव सेवा जैसे मूल्यों को जीवन का आधार बताया है। और उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने 100 वर्ष पहले थे साथियों।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। वे बचपन से ही जिज्ञासु थे, प्रतिभाशाली थे और साहसी थे। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था।
0: बिल्कुल।
1: वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भारतीय संस्कृति और सनातन दर्शन का परिचय पूरी दुनिया को कराया। उनके भाषण ने भारत का गौरव बढ़ाया और विश्व को मानवता तथा भाईचारे का संदेश दिया।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके युवाओं के हाथ में होता है। वे युवाओं को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। कशिश
0: जी जी,
1: उनका प्रसिद्ध कथन था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो।
0: बिल्कुल।
1: ये संदेश आज के युवाओं के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है और समर्पण की जरूरत है।
0: जी हाँ।
1: और जो युवा अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहते हैं वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते ही है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का युवा जानकारी से भरपूर है लेकिन कई बार सही दिशा से दूर वे हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: उनके पास साधन तो है लेकिन धैर्य कम है, अवसर है जागृति जी लेकिन आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है। इसलिए श्रोता साथियों, स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें ये सिखाता है कि यदि व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान ले तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता।
1: बिल्कुल।
0: स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास होता है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करते हैं जागृति जी, वही कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ पाते हैं।
1: जी हाँ।
0: दोस्तों, आज प्रतियोगी परीक्षाओं, नौकरी और करियर की दौड़ में कई युवा छोटी सी असफलता से निराश हो जाते हैं। ऐसे समय में जागृति जी, स्वामी विवेकानंद जी का संदेश हमें याद दिलाता है कि असफलता अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर होती है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी आत्मविश्वास को सफलता की पहली सीढ़ी मानते थे। उनका कहना था कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता वो ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकता।
0: बिल्कुल।
1: आज के युवा असफलता, तुलना और सामाजिक दबाव के कारण आत्मविश्वास खो बैठते हैं। विवेकानंद जी का भी संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति मौजूद है, आवश्यकता केवल उसे पहचानने और विकसित करने की है। जब युवा अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीख जाते हैं तब वे जीवन की कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना भी कर सकते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारी युवा साथियों से बात कर ही रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार है वो हमारे युवा साथियों के लिए किस प्रकार से प्रेरणादायक है, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, और हमारी बातें चल रही थी स्वामी विवेकानंद जी के विचार और आज के युवाओं को लेकर। यही जानते हैं कशिश की शिक्षा का सही उद्देश्य क्या है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्त करने का साधन नहीं मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा वो है जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है, मन की शक्ति को बढ़ाती है और उसे आत्मनिर्भर बनाती है। आज की शिक्षा व्यवस्था में अंक और प्रतियोगिताओं पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, लेकिन यदि शिक्षा के साथ नैतिकता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का विकास न हो कशिश, तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। युवाओं को ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जो उन्हें अच्छा इंसान बनाने में सहायता करे।
1: बिल्कुल, इसी के साथ दोस्तों उनका कहना था कि जीवन में लक्ष्य का स्पष्ट होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन दिशाहीन हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: आज जागृति जी हम देखते हैं कि कई युवा बिन योजना के केवल दूसरों की नकल करते रहते हैं। कोई दोस्त अगर उनका इंजीनियर बन रहा है तो वे भी वही रास्ता चुन लेते हैं। कोई सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध हो रहा है तो वे भी उसी दिशा में चल पड़ते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में विवेकानंद जी का जीवन उन्हें ये सिखाता है कि अपने गुणों को पहचान कर लक्ष्य तय करें और पूरी निष्ठा से उसकी ओर बढ़ते रहें। दोस्तों, उनके अनुसार शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं थी, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का एक माध्यम थी। आज डिग्रियां बढ़ रही हैं, लेकिन व्यवहार, नैतिकता और जिम्मेदारी जैसे गुण कम होते जा रहे हैं। जागृति जी, युवाओं को ऐसी शिक्षा अपनानी चाहिए जो उन्हें अच्छा इंसान भी बनाए, और केवल सफल पेशेवर उनके लिए काफी नहीं होता है, ये भी उन्हें जानना चाहिए।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, स्वामी विवेकानंद भाग्य से अधिक कर्म पर विश्वास करते थे। आज के समय में कई युवा जल्दी सफलता तो पाना चाहते हैं जागृति जी, लेकिन हर बड़ी उपलब्धि के पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन और धैर्य छुपा होता है, ये बात वे भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र होता है। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र व्यक्ति को हमेशा सम्मान दिलाता है।
1: बिल्कुल,
0: आज के समय में हम देखते हैं कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों का महत्व पहले से और अधिक बढ़ गया है। युवा यदि अपने जीवन में अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों को अपनाएंगे तो वे स्वयं के साथ समाज को भी बेहतर बना सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कहा भी गया है कि चरित्रवान युवा ही राष्ट्र की असली ताकत होते हैं।
1: जी जी
0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को चुनौतियों से भागने के बजाय उनका सामना करना सिखाया कशिश।
1: जी हाँ,
0: वे कहते थे कि संघर्ष ही व्यक्ति को मजबूत बनाता है। आज के युवा पढ़ाई, रोजगार, प्रतियोगिता और भविष्य को लेकर बहुत सारी दबावों का सामना करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे समय में उन्हें निराश होने के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। हर चुनौती अपने साथ सीखने और आगे बढ़ने का अवसर लेकर आती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अगर हमारे युवा साथियों को हम बताएं तो स्वामी विवेकानंद जी ने महिलाओं की शिक्षा और सम्मान में भी समर्थन दिया है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, उन्होंने कहा है कि जिस समाज में महिलाओं का सम्मान होता है वही समाज आगे बढ़ता है।
0: जी हाँ,
1: उन्होंने श्रोता साथियों अपने जीवन से जुड़े ढेर सारी बातें हमें बताई है, जैसे कि हमें प्रतिदिन एक लक्ष्य तय करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपनी जीवन शैली में योग और व्यायाम को शामिल करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा श्रोता साथियों ऐसा भी बताया गया है कि आज पर्यावरण संरक्षण युवाओं की जिम्मेदारी है। ऐसे में पेड़ लगाना, जल बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और स्वच्छता बनाए रखना राष्ट्र सेवा का एक रूप है। जागृति जी,
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि मानव सेवा को भी ईश्वर सेवा मानते थे वो। उनका मानना था कि गरीब, कमजोर और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म होता है।
1: बिल्कुल,
0: आज हम देखते हैं कि समाज में अनेक लोग आर्थिक और सामाजिक मानसिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। युवा यदि सेवा, सहयोग और करुणा की भावनाओं को अपनाएंगे तो समाज और अधिक संवेदनशील और मजबूत बन जाएगा।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, हम कहना चाहेंगे आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कि यदि स्वामी विवेकानंद जी आज हमारे बीच होते तो वे युवाओं से कहते हैं कि अपने भीतर की शक्ति को जरूर पहचानो, लक्ष्य निर्धारित करो, अनुशासन को अपनाओ और समाज तथा राष्ट्र के लिए कार्य करें। वे युवाओं को केवल सफल नहीं बल्कि उपयोगी और जिम्मेदार नागरिक बनाना सिखाते हैं।
1: जी हाँ,
0: उनका जीवन हमें बताता है कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन विचार और कर्म इतने बड़े हो सकते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें याद रखे।
1: बिल्कुल,
0: आज का युवा यदि विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन में उतार लेगा तो वे स्वयं के साथ समाज और देश का भविष्य भी बदल सकता है।
1: जी हाँ जागृति जी, तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों से ये कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद केवल एक सन्यासी नहीं थे साथियों, बल्कि युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे।
0: बिल्कुल,
1: उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उनके समय में थे। यदि आज का युवा जागृति जी आत्मविश्वास, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति जैसे मूल्यों को अपने जीवन में अपनाए तो वह न केवल अपने सपनों को पूरा कर सकता है बल्कि समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथियों, आज आवश्यकता बस इस बात की है कि हम युवा केवल सफलता के पीछे न भागे बल्कि अपने व्यक्तित्व का भी विकास करें। ज्ञान के साथ संस्कार, तकनीक के साथ नैतिकता और सपनों के साथ जिम्मेदारी, यही स्वामी विवेकानंद का संदेश है साथियों।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का अमूल्य स्रोत है। उन्होंने आत्मविश्वास, शिक्षा, चरित्र, सेवा, राष्ट्र प्रेम और मानवता का जो संदेश दिया वो हर युग में प्रासंगिक रहेगा। आज जब युवा अनेक चुनौतियों और अवसरों के बीच खड़े हैं तब विवेकानंद जी के विचार उन्हें सही दिशा दिखा सकते हैं। श्रोताओं, आवश्यकता सिर्फ इस बात की कि हम केवल उनके विचारों को नहीं पढ़े बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारें। जब युवा आत्मविश्वासी, चरित्रवान, अनुशासित और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित बनेंगे तब भारत वास्तव में एक सशक्त और विकसित राष्ट्र बनेगा। इसलिए उन्होंने हमेशा यही कहा है कि उठो, जागो और आगे बढ़ो। विवेकानंद जी के जो सपने हैं वो भारत में गढ़ो। इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम के साथ हम विदा लेना चाहेंगे श्रोताओं, क्योंकि समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल जागृति जी।

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसपड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएगा खेतर बंजर थी जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: थारी में पासो लावो जूनू हवार सेहत बनेगा एकदम शानदार बाजरा ज्वार रागी नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू भारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातू जोड़ो
4: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा
5: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
6: भूमि आवंटन हो दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया हर बोना ने मले सही जानकारी सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार याद रखो जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है
5: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी

0: नालियां जाम हो और वातावरण प्रदूषित हो तो विकास की चमक भी फीकी पड़ जाती है। इसलिए कचरा प्रबंधन केवल सफाई का विषय नहीं है बल्कि एक स्वस्थ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण का आधार है।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी आज कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें बनी रहेंगी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत के पहले गीत के साथ में क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को हम मनोरंजन करवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कचरा प्रबंधन, जो कि स्वच्छ भविष्य की कुंजी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, अब यही बात आती है कि कचरा सिर्फ गंदगी नहीं, एक बढ़ती हुई चुनौती है। आज दुनिया तेजी से बदल रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और उपभोग भी बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ श्रोता साथियों, कचरे की मात्रा भी बढ़ती जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: पहले जो वस्तुएं वर्षों तक चलती थी, अब उनकी जगह एक बार उपयोग करके फेंक देने वाली चीजों ने ले ली है। इसका परिणाम जागृति जी ये हुआ है कि कचरे का पहाड़ लगातार ऊंचा होता जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: कचरे की समस्या केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों में भी प्लास्टिक, पैकेजिंग सामग्री और अन्य अपशिष्ट तेजी से बढ़ रहे हैं। यदि समय रहते श्रोता साथियों इन समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में यह हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर संकट बन सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि सफाई की जिम्मेदारी सरकार या नगर निकाय की है, लेकिन श्रोताओं सच ये है कि स्वच्छता की शुरुआत हमारे अपने घर से होती है। जिस दिन हम अपने घर में कचरे को सही तरीके से संभालना शुरू कर देंगे, उसी दिन से बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। हर व्यक्ति अगर ये संकल्प ले कि वो कचरा इधर उधर नहीं फेंकेगा, प्लास्टिक का कम उपयोग करेगा और स्वच्छता के नियमों का पालन करेगा, तो पूरे समाज का स्वरूप बदल सकता है।
1: जी जी,
0: स्वच्छ भविष्य किसी योजना का परिणाम नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की अच्छी आदतों का परिणाम होता है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसके लिए हमें गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखने की जरूरत है। श्रोता साथियों, कचरा प्रबंधन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम ही यही है कि कचरे का हम पृथक्करण करें।
0: बिल्कुल,
1: गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखना एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही बड़ा होता है। श्रोता साथियों, गीले कचरे में रसोई से निकलने वाले जैविक पदार्थ आते हैं, जबकि सूखे कचरे में प्लास्टिक, कागज, कांच और धातु जैसी वस्तुएं शामिल होती है। जब दोनों प्रकार के कचरे को जागृति जी हम अलग रखते हैं, तो उसका पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण आसान हो जाता है। यदि हम यह छोटा सा कदम उठा लें, तो कचरे का बड़ा हिस्सा लैंडफिल में जाने से बच सकता है और उपयोगी संसाधन में बदला जा सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी सबसे बड़ी भूल ये है कि हम कचरे को बेकार समझते हैं, जबकि वास्तव में कचरे का सबसे बड़ा हिस्सा दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। रसोई का जैविक कचरा खाद बन सकता है, पुराना कागज नए कागज में बदल सकता है, प्लास्टिक और धातु का पुनर्चक्रण करके नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार श्रोता साथियों, कचरा केवल अपशिष्ट नहीं बल्कि एक मूल्यवान संसाधन है। जब हमारी सोच बदलेगी, तभी व्यवस्था बदलती है। कचरे को बोझ नहीं बल्कि हमें अवसर के रूप में देखने की आवश्यकता है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि आज प्लास्टिक हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। बाजार से लेकर घर तक हर जगह प्लास्टिक का उपयोग देखने को मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: सुविधा के कारण श्रोता साथियों, इसका उपयोग तो बढ़ गया है, लेकिन इसके दुष्परिणाम उतने ही गंभीर है। प्लास्टिक वर्षों तक नष्ट नहीं होता, यह मिट्टी की उर्वरकता को प्रभावित करता है, जल स्रोतों को प्रदूषित करता है और पशु पक्षियों के जीवन के लिए खतरा बन जाता है।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, कई बार जानवर भोजन समझकर प्लास्टिक को खा लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहना चाहेंगे कि प्लास्टिक का विवेकपूर्ण उपयोग, उसके विकल्पों को अपनाना समय की आवश्यकता है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम कह सकते हैं कि कचरा केवल गंदगी नहीं फैलाता बल्कि अनेक बीमारियों को जन्म देता है।
1: बिल्कुल,
0: जहाँ कचरे के ढेर होते हैं, वहाँ मच्छर, मक्खियाँ और अन्य कीट तेजी से पनपते हैं। हम कह सकते हैं कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और अन्य संक्रमणों का कारण ही ये मच्छर है। स्वस्थ समाज का निर्माण स्वच्छ वातावरण के बिना संभव नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम अपने आसपास सफाई बनाए रखते हैं श्रोताओं, तो न केवल बीमारियां कम होंगी बल्कि स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च भी कम होगा। स्वच्छता वास्तव में स्वास्थ्य की पहली शर्त है।
1: बिल्कुल,
0: तो जैसा कि अंजलि हम बात कर रहे हैं स्वच्छता को लेकर हमारे आज के इस कार्यक्रम में, ये बातें हमारी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जागृति जी, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि स्वच्छता और स्वास्थ्य का अटूट संबंध कैसे है, यहीं अब बात आती है कि गांव में कचरा प्रबंधन की नई आवश्यकता क्यों है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, एक समय था जब गांव प्राकृतिक रूप से स्वच्छ हुआ करते थे। अधिकांश वस्तुएं जैविक होती थी और आसानी से मिट्टी में मिल जाती थी, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। गांव में भी पैकेट बंद सामान, प्लास्टिक की बोतलें और अन्य अपशिष्ट जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: यदि जागृति जी इनके प्रबंधन का ध्यान नहीं दिया गया तो गांवों की प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छता प्रभावित हो सकती है। गांव में सामुदायिक स्तर पर कचरा संग्रहण, कंपोस्टिंग और जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि कचरा प्रबंधन केवल सरकारी व्यवस्था से सफल नहीं हो सकता, इसके लिए पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जब गांव की पंचायत स्वच्छता को प्राथमिकता देती है, नियमित सफाई की व्यवस्था करती है और लोगों को जागरूक बनाती है, तब सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगते हैं।
0: जी हाँ,
1: समुदाय की भागीदारी से स्वच्छता एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन बन जाती है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जब युवा किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं तो उनमें ऊर्जा है, नई सोच और परिवर्तन की क्षमता अपने आप आती है।
0: हाँ।
1: यदि युवा स्वच्छता अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा अंजलि, लोगों को जागरूक करेगा और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: आज आवश्यकता ऐसे युवाओं की है जो केवल शिकायत न करें बल्कि समाधान का हिस्सा बने।
0: बिल्कुल जागृति जी, कहा जा सकता है श्रोता साथियों से कि कचरा प्रबंधन का सबसे प्रभावी सूत्र है कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण। जो वस्तु आवश्यक नहीं है उसका उपयोग कम करें, जिन वस्तुओं का दोबारा उपयोग हो सकता है उन्हें फेंकने के बजाय पुनः उपयोग में लाएं, और जिन वस्तुओं का पुनर्चक्रण संभव है उन्हें सही प्रक्रिया तक पहुंचाएं। यदि यह संस्कृति समाज में विकसित हो जाए तो कचरे की मात्रा में भारी कमी लाई जा सकती है। श्रोता साथियों, आज विज्ञान और तकनीक ने कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में अनेक रास्ते खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: आधुनिक तकनीकों की मदद से कचरे से ऊर्जा बनाई जा सकती है, जैविक कचरे से खाद बनाई जा सकती है और प्लास्टिक को नए उत्पादों में बदला जा रहा है।
1: जी हाँ,
0: स्मार्ट तकनीकों का प्रयोग करके जागृति जी, कचरा संग्रहण और निपटान को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। यह भविष्य की जरूरत भी है और अवसर भी।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि बहुत से लोग कचरे को केवल समस्या मानते हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी बन सकता है। हम कह सकते हैं कि रिसाइकिलिंग उद्योग कंपोस्ट निर्माण, कचरा संग्रहण और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास भी संभव है। कचरा प्रबंधन हमें सिखाता है श्रोताओं की सही सोच के साथ हर चुनौती अवसर में बदली जा सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज हम जो कार्य करते हैं उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। यदि हम आज पर्यावरण की अनदेखी करेंगे तो श्रोता साथियों, भविष्य में हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ियां इसके दुष्परिणाम भुगतेंगे।
1: बिल्कुल,
0: स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और स्वच्छ वातावरण उनका अधिकार है, इसलिए श्रोता साथियों यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पृथ्वी को बेहतर स्थिति में आगे बढ़ाएं। अक्सर हम विशेष अवसरों पर सफाई तो करते हैं और फिर पुरानी आदतों में लौट आते हैं, लेकिन जागृति जी, वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब स्वच्छता हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है।
1: बिल्कुल,
0: स्वच्छता कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब यह सोच विकसित होगी तभी स्थायी परिवर्तन संभव होगा।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि सच्चे स्वराज की भावना केवल अधिकारों की बात नहीं करती बल्कि जिम्मेदारियों की भी बात करती है। यदि हर नागरिक अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेगा तो स्वच्छ और सुंदर भारत का सपना साकार हो जाएगा।
0: जी हाँ।
1: हमें समझना होगा श्रोता साथियों कि सड़क पर पड़ा कचरा केवल किसी और की समस्या नहीं है, वो हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब हम मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी का भाव अपनाएंगे तभी हम वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि कचरा प्रबंधन केवल सफाई का विषय नहीं है बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जिम्मेदारी का विषय भी है।
1: बिल्कुल,
0: ये हमारे वर्तमान को बेहतर बनाने के साथ साथ श्रोता साथियों भविष्य को भी सुरक्षित करने का माध्यम है। सच्चा स्वराज तभी संभव है जब नागरिक जागरूक हो, समाज जिम्मेदार हो और विकास प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़े।
1: बिल्कुल,
0: श्रोता साथियों हमें ये संकल्प लेना होगा कि अपने घर, अपने गांव, अपने मोहल्ले और अपने देश को स्वच्छ बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। याद रखिए कि स्वच्छ भविष्य किसी चमत्कार से नहीं बनेगा, वह हमारे आज के छोटे छोटे प्रयासों से बन पाएगा।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि सच्चा स्वराज केवल शासन की व्यवस्था का नाम नहीं है बल्कि जागरूकता, नागरिकों की जिम्मेदारी और सहभागिता का प्रतीक है।
0: बिल्कुल,
1: जब हम अपने घर, अपने आंगन, अपनी गली और अपने गाँव को स्वच्छ रखने का संकल्प लेते हैं तब हम केवल सफाई नहीं करते बल्कि एक बेहतर समाज और सुरक्षित भविष्य की नींव रखते हैं। याद रखिए श्रोता साथियों, कचरा अपने आप समस्या नहीं बनता, हमारी लापरवाही उसे समस्या बनाती है और वही कचरा हमारी समझदारी, जागरूकता और सही प्रबंधन से एक उपयोगी संसाधन भी बन सकता है। आज आवश्यकता किसी एक व्यक्ति, संस्था या सरकार के प्रयास की नहीं बल्कि पूरे समाज के सामूहिक संकल्प की है। हमें ये सोचना होगा कि हम कचरे को इधर उधर नहीं फैलाएंगे, गीले सूखे कचरे को अलग करेंगे, प्लास्टिक के उपयोग को कम करेंगे, अपने आसपास के लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि स्वच्छ वातावरण केवल हमारी जरूरत नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है।
0: जी जी।
1: एक स्वच्छ गांव, एक स्वच्छ शहर और एक स्वच्छ भारत का सपना तभी साकार होता है अंजलि, जब हर नागरिक ये कहे कि मैं बदलाव का इंतजार नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, मैं स्वयं बदलूंगी। इसी संदेश के साथ श्रोता साथियों, हमें स्वच्छता की आदत को अपनाना होगा, कचरा प्रबंधन को जन आंदोलन बनाना होगा और सच्चे स्वराज की भावना को मजबूत बनाना होगा।
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, अब इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे क्योंकि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथी, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। इसी उम्मीद और आशा के साथ आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम घूमर हमर वावारी अमर हित्ते बोने ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
0: राम राम होवे बोनो आप सब हमड़ी रिया हो अपड़ू सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहा हमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में
1: होवे बहन बोनो लेने हाजिर थी गयो हो कार्यक्रम घूमर ने लेने एक ना विषय ने हाथे मनीषा बोन आज अपने बहन बोनो ते की बातचीत नु विषय है के प्रसव ने बाद माँ नी देखभाल केम जरूरी है।
0: होवे
1: आपड़े देखो हो के अक्सर आ बातें जो हैं ये कम चर्चा में आवे हैं। सोरन ने जन्म ने बाद है तो जो परिवार है ये केवल नवजात शिशु की देखभाल में लाकी सा है पर कोई इनी माने वारा में कोई विचार नहीं करतु कि इन्हें देखभाल अपना ने हरते करवी है।
0: होवे
1: कि आपड़े देखो हो कि स्वस्थ माँ स्वस्थ सोरो ने खुशहाल परिवार नी नेव कहवा है। तो आज आपड़े इस जानूंगा कि प्रसव ने बाद जो माँ रहे इनकी देखभाल की जरूरत केम पड़े है ने अपना ने इनकी देखभाल हरते करवी सुवे।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, कई लोग उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो उनके पास नहीं है, और इसी भाग दौड़ में वे उस खुशी को खो देते हैं जो पहले से उनके पास होती है। जी हाँ, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अक्सर उन चीजों की कीमत तब समझते हैं जब वह हमसे दूर हो जाती है।

साथियों, कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यदि इसे गहराई से समझ लिया जाए तो यह जीवन की दिशा बदल सकता है। आज का विषय है, जो हमारे पास है उसकी कद्र करना क्यों जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जीवन में कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। बेहतर नौकरी, अधिक पैसा, बड़ा घर, नई सुविधाएं, अधिक सफलता, ये सभी इच्छाएं स्वाभाविक हैं और आगे बढ़ना गलत नहीं, सपने देखना भी गलत नहीं है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम जो नहीं मिला उसी पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और जो मिला उसकी अहमियत भूल जाते हैं। इसी के साथ इंसान की आदत, यानी कि जो नहीं है उसी पर नजर की बात करें तो यदि किसी व्यक्ति के पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल चाहता है, जिसके पास मोटरसाइकिल है वह कार चाहता है और जिसके पास कार है वह और बड़ी कार चाहता है। यह इच्छा का अंतहीन सिलसिला यूं ही चलता रहता है। दोस्तों, इच्छाएं बुरी नहीं है, लेकिन वे हमें वर्तमान की खुशियों से दूर कर दे तो वे बोझ बन जाती है। कई बार हम अपने जीवन की अच्छाइयों को इतना सामान्य मान लेते हैं कि उसकी कीमत भूल जाते हैं। इसीलिए किसी ने बहुत बड़ी बात कही है कि जो हमारे पास है वह किसी दूसरे व्यक्ति का सपना भी हो सकता है। इसलिए कृतज्ञता के भाव के साथ हमें हमारे जीवन जीना है। ये क्यों जरूरी है? तो श्रोता साथियों, कृतज्ञता यानी कि जो मिला है उसके प्रति धन्यवाद का भाव। जब हम अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं ना साथियों, तो महसूस कर पाते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। जैसे कि परिवार का प्यार, अच्छे मित्र, स्वस्थ शरीर, सीखने का अवसर, दो वक्त की रोटी और सुरक्षित जीवन। श्रोता साथियों, यकीन मानिए, ये ऐसी चीज है जिन्हें हम अक्सर सामान्य मान लेते हैं, लेकिन जिनके पास ये नहीं है उनसे पूछिए कि इन सारी चीजों का महत्व क्या है, क्योंकि खुश रहने वाले लोगों के पास सब कुछ नहीं होता और वे जो कुछ है उसी में खुश रहना सीख लेते हैं। आज सोशल मीडिया और दिखावे के दौर में तुलना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम लगातार दूसरों के जीवन को देखते रहते हैं, किसी की सफलता, किसी का घर, किसी की नौकरी तो किसी की यात्रा, और फिर हमें अपना जीवन अधूरा लगने लगता है। लेकिन श्रोता साथियों, हम ये भूल जाते हैं कि हम किसी की पूरी कहानी नहीं देख रहे होते, केवल उसका एक चमकदार सा हिस्सा देख रहे होते हैं। तुलना हमें उस खुशी से दूर कर देती है जो हमारे पास पहले से मौजूद है। यानी कि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि तुलना का खेल ऐसा है जिसमें जीतने वाला भी कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए जब परिवार साथ होता है तब उसकी मौजूदगी सामान्य लगती है। माँ की चिंता, पिता की सलाह, भाई बहनों की नोक झोंक, बुजुर्गों का स्नेह, ये रोजमर्रा की बातें लगती हैं। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती है ना श्रोता साथियों, तो दूरी पड़ती है और कोई अपना साथ छोड़ देता है, तब एहसास होता है कि हमारे पास कितनी बड़ी दौलत थी। इसलिए अपने लोगों की कद्र तब कीजिए जब वे आपके साथ हैं, क्योंकि रिश्तों की कीमत बैंक बैलेंस से नहीं नापी जाती, वे जीवन के कठिन समय में अपना मूल्य खुद साबित करते हैं। बहुत से लोग श्रोता साथियों, धन कमाने में इतना आजकल व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तब उन्हें समझ में आता है कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं है, स्वस्थ शरीर है। जो व्यक्ति स्वस्थ है वह जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य की कदर कीजिए, क्योंकि दोस्तों, जिस जीवन को हम जी रहे हैं और जिस जीवन में हम इतनी सुविधाओं को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें अगर हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो हम उस जीवन को अच्छे से नहीं जी पाएंगे। इसलिए सारी चीजों के बीच में संतुलन बनाकर हमें हमारे जीवन को जीने की जरूरत है। तो बातें जैसा कि कार्यक्रम में बहुत अच्छी हमारी आपसे चल रही हैं, आगे भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है आप सभी को एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवाने का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को।

से हैं बातें, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं।

साथियों, गीत से पहले जैसा कि हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि मनुष्य जो है अपने पास जो होता है उसकी कद्र नहीं करता और बाद में उसे पछतावा होता है। अब यही बात करें कि छोटी खुशियों की अहमियत क्या है, तो कई लोग बड़ी खुशियों का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जीवन केवल बड़ी उपलब्धियों से नहीं बनता। जीवन बनता है सुबह की ताजी हवा से, परिवार के साथ समय बिताने से, परिवार के साथ भोजन करने से, किसी बच्चे की मुस्कान से, किसी मित्र की सच्ची बात से, तो किसी की मदद करने के सुख से। श्रोता साथियों, जो व्यक्ति छोटे खुशियों को पहचान लेता है वह जीवन को अधिक गहराई से जी पाता है। वो कहते हैं ना कि जीवन की सबसे सुंदर चीजें अक्सर मुफ्त होती हैं, लेकिन हम उन्हें सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। संतोष का श्रोता साथियों अर्थ ये नहीं है कि हम हमारे सपने ही छोड़ दें, बल्कि वर्तमान की सुंदरता को पहचानना भी जरूरी है। जो व्यक्ति धन्यवाद कहना सीख जाता है वह शिकायतों का बोझ हल्का कर लेता है, क्योंकि इंसान जल्दी अभ्यस्त हो जाता है। जो चीज कल तक उसे खुशी देती थी वह आज सामान्य लगने लगती है। यही कारण है कि हमें समय समय पर रुक कर देखना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या क्या अच्छा है और क्या क्या बुरा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे भीतर संतोष और सकारात्मकता बढ़ती है, क्योंकि जीवन में सब कुछ कभी किसी को नहीं मिलता। हर व्यक्ति के पास कुछ कमियां होती है तो कुछ के पास खूबियां होती है। यदि हम केवल कमियों पर ध्यान देंगे तो दुखी रहेंगे, यदि हम उपलब्धियों और आशीर्वाद को भी देखेंगे तो जीवन अधिक सुंदर लगेगा। इसलिए दोस्तों, जीवन की वास्तविक समृद्धि केवल इस बात से तय नहीं होती है कि हमारे पास क्या है, कितना है, बल्कि इस बात पर तय होती है कि जो है उसकी कितनी कदर करते हैं। जो व्यक्ति हमेशा कमी पर ध्यान देता है वह बहुत कुछ पाकर भी असंतुष्ट ही रहता है, लेकिन जो व्यक्ति श्रोता साथियों अपने जीवन में मौजूद अच्छाइयों को पहचानता है वह सीमित संसाधनों में संतोष और खुशी पा लेता है। इसलिए सपने देखिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, लेकिन इस यात्रा में अपने वर्तमान को मत भूलिए। उन लोगों की कदर कीजिए जो आपके साथ हैं। अपने स्वास्थ्य की कदर कीजिए, अपने अवसरों की कदर कीजिए और उन छोटी छोटी खुशियों की कदर कीजिए श्रोता साथियों, जो हर दिन आपके जीवन को अर्थ देती है। क्योंकि कई बार हम जिस खुशी की तलाश दूर दूर तक करते हैं वह हमारे पास पहले से ही मौजूद होती है। एक प्यारी सी कविता आपको मैं सुनाना चाहूंगी दोस्तों, कि जो मिला है जीवन में उसका मान किया करो, हर छोटी सी खुशियों का सम्मान किया करो। हर दिन सूरज नई किरण लेके आता है, उम्मीदों का दीपक मन में जलता है। कल की चिंता में आज को न खोया करो, जो मिला है जीवन में उसका मान किया करो। माँ की ममता पिता का साया अनमोल है, अपने लोगों का साथ सबसे बेमोल है। रिश्तों को धन दौलत से ना तोला करो, जो मिला है जीवन में उसका मान किया करो। दो वक्त की रोटी भी किसी का सपना है, सिर पर छत होना भी बड़ा अपना है। छोटी छोटी बातों पर ना रोया करो, जीवन में जो मिला है उसका मान किया करो। हर किसी की राह में कुछ कमी रहती है, फिर भी जिंदगी मुस्कुराने को कहती है। शिकायतों का बोझ दिल पर न ढोया करो, जो मिला है जीवन में उसका मान किया करो। सुख दुख तो मौसम की तरह आते जाते रहते हैं दोस्तों, जीवन जीने के नए सबक सिखाते हैं। हर हाल में उम्मीद का दीप संजोया करो, जो मिला है जीवन में उसका मान किया करो। कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता, वक्त किसी के लिए कभी नहीं ठहरता। आज के पल को दिल से संजोया करो, जो मिला है जीवन में उसका मान किया करो। जो मिला है उस पर क्यों अफसोस करें, जो मिला है पहले उसका तो एहसास करें। कृतज्ञता से भर जाए जब मन का संसार, तब हर दिन लगेगा जीवन का त्योहार। इसलिए दोस्तों, जो मिला है जीवन में उसका मान किया करो, हर छोटी सी खुशियों का सम्मान किया करो। इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले दोस्तों आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही अब मैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेना चाहूंगी। कहना चाहूंगी कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां अक्सर उन चीजों में छिपी होती है जिन्हें हम सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। तो आज से ही हम सभी को ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें हर चीज को सामान्य नहीं समझना है और हमारे आसपास जो खुशियां मौजूद है उन्हें महसूस करके हमारे जीवन को यादगार बनाना है। तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम दोस्तों कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हम पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपणा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
2: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
3: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
2: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता ने उम्मीद, मुसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, किनके घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ,
1: जहाँ हम समाज, संस्कृति, शिक्षा और प्रेरणा से जुड़े मुद्दे पर रोजाना बात करते हैं। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पित है उन महान संत, दार्शनिक, राष्ट्र निर्माता और युवाओं के प्रेरणा स्रोत को, जिन्होंने अपने विचारों से न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की महानता से परिचित कराया था। आज हम बात करने वाले हैं मनीषा, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय पर, उनके संघर्ष, उनके विचारों और उनके अमूल्य योगदान की। साथ ही जानेंगे उनकी पुण्यतिथि हमें केवल श्रद्धांजलि देने का अवसर नहीं देती बल्कि उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने की प्रेरणा भी देती है।
0: जी हाँ,
1: तो कार्यक्रम में ढेर सारी बातें हमारी श्रोता साथियों से रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे दोस्तों को सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि, उनके विचार और आदर्श राष्ट्र निर्माण को लेकर।
1: बिल्कुल
0: साथियों, आज जब समाज में अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब विवेकानंद जी के विचार हमें आत्मविश्वास, सेवा और साहस का अनुशासन और मानवता का मार्ग हमें दिखाते हैं। उनका जीवन यह संदेश देता है साथियों कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, यदि मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे अंजलि जी, तो वह असंभव कार्यों को भी संभव कर सकता है। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि नरेंद्र बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि वे एक बार पढ़ी हुई बात को लंबे समय तक याद रखते थे।
1: बिल्कुल,
0: वे पढ़ाई के साथ साथ संगीत, व्यायाम, तैराकी, घुड़सवारी और खेलों में भी समान रूप से रुचि रखते थे।
1: जी बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद भारत के महान संत, समाज सुधारक, दार्शनिक, विचारक और आध्यात्मिक गुरु थे। उनका व्यक्तित्व मनीषा इतना प्रभावशाली था कि वह भी जो भी जाते थे लोग उनके विचारों से प्रभावित हो जाते
0: जी
1: थे।
0: हाँ।
1: उन्होंने भारतीय संस्कृति, वेदांत और मानव सेवा के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाया था। वे मानते थे श्रोता साथियों कि मनुष्य के भीतर असीम शक्ति छुपी होती है।
0: बिल्कुल।
1: आवश्यकता केवल उसे पहचानने और सही दिशा देने की होती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और सेवा भावना से कोई भी व्यक्ति समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
0: बिल्कुल।
1: स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली साहसी संस्कारी महिला थी। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत बुद्धिमान, जिज्ञासु और निडर थे। उन्हें खेलना, संगीत सीखना, योग करना और पुस्तकों का अध्ययन करना बहुत पसंद था। वे हर बात को तर्क और अनुभव के आधार पर समझाना चाहते थे। केवल किसी बात को सुनकर मान लेना उनकी आदत में नहीं था।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि उन्होंने नेतृत्व की क्षमता अद्भुत थी। वे अपने साथियों के बीच रहते थे श्रोता साथियों हमेशा आगे। कठिन परिस्थितियों में भी वे घबराते नहीं थे। सत्य बोलना, अन्याय का विरोध करना और उनके स्वभाव का ये हिस्सा था। उनके सबसे बड़ी श्रोता साथियों विशेषता थी निडरता। बचपन से ही वे किसी प्रकार के अंधविश्वास को स्वीकार नहीं करते थे। यदि कोई भी उन्हें कोई बात से डराने का प्रयास करता, तो वे स्वयं उसकी सच्चाई जानने का प्रयास करते थे।
1: बिल्कुल,
0: यही श्रोता साथियों आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बन गया।
1: बिल्कुल मनीषा, नरेंद्रनाथ ने अपनी शिक्षा कोलकाता में प्राप्त की। वे इतिहास, दर्शन, साहित्य, संगीत, संस्कृत, अंग्रेजी और अलग अलग धर्मों का गहन अध्ययन करते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे सत्य की खोज किया करते थे। वे अनेक विद्वानों और संतों से एक ही प्रश्न पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? अधिकांश लोग इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते थे।
0: जी हाँ।
1: फिर उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। नरेंद्रनाथ की मुलाकात दक्षिणेश्वर मंदिर के संत रामकृष्ण परमहंस से हुई। जब उन्होंने वही प्रश्न पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तब रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया कि हाँ, मैंने ईश्वर को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यही उत्तर नरेंद्र के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। धीरे धीरे वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने और आध्यात्मिक जीवन की अग्रसर हुए। रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद नरेंद्रनाथ ने संन्यास ग्रहण किया। उन्हें नया नाम मिला स्वामी विवेकानंद। अब उनका उद्देश्य केवल अपना जीवन सुधारना नहीं था, बल्कि पूरे समाज को जागृत करना था।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रारंभ में नरेंद्र ने अपने गुरु की अनेक बार परीक्षा भी ली। वे हर बात को सत्य की कसौटी पर परखते थे, लेकिन श्रोता साथियों धीरे धीरे उन्हें अनुभव हुआ कि उनके गुरु का जीवन सत्य, प्रेम और ईश्वर के प्रति प्रत्यक्ष रूप से अनुभव परिपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: कृष्ण परमहंस ने श्रोता साथियों नरेंद्र को सिखाया कि ईश्वर प्राप्त केवल पूजा पाठ से नहीं किया जा सकता, बल्कि निष्काम प्रेम, सेवा और सत्य और आत्म अनुभूति से होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। स्वामी विवेकानंद ने पैदल पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने गांवों की गरीबी, किसानों की कठिनाइयां, महिलाओं की स्थिति, अशिक्षा, सामाजिक असमानता को बहुत निकट से देखा है।
0: जी हाँ।
1: उन्होंने समझा कि केवल धार्मिक उपदेश से समाज नहीं बदलेगा, समाज को शिक्षा, आत्मविश्वास, रोजगार, चरित्र निर्माण और सेवा की आवश्यकता है। सन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म संसद आयोजित हुई। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत इन शब्दों से की कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, इतना सुनते ही पूरा सभागार तालियों से गड़गड़ा से गूंज उठा। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत सहिष्णुता, प्रेम, भाईचारे और मानवता की भूमि है। उनका यह भाषण आज भी विश्व इतिहास के सबसे प्रभावशाली भाषणों में गिना जाता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करने के दौरान उन्होंने देखा कि भारत सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद भी श्रोता साथियों गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने अनुभव किया कि यदि देश को आगे बढ़ाना है तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा और सम्मान और अवसर पहुंचाने होंगे।
1: बिल्कुल,
0: वे मानते थे कि जब तक गरीबी, कमजोर और उपेक्षित वर्ग आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक राष्ट्र का वास्तविक विकास नहीं हो सकेगा।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं। ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर हम उनके जीवन परिचय से रूबरू हो पा रहे हैं, यही दोस्तों आपको कहना चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद युवाओं को राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। वे कहते थे, मनीषा, कि उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका विश्वास था कि यदि युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और चरित्र होगा तो देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। ऐसी शिक्षा चाहते थे जो आत्मविश्वास बढ़ाए, जो चरित्र निर्माण करे, जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, जो केवल नौकरी नहीं बल्कि जीवन जीना सिखाए, जो समाज की सेवा करने की प्रेरणा भी दे।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि उन्होंने युवाओं को देश की सबसे बड़ी शक्ति भी बताया और विश्वास व्यक्त किया श्रोता साथियों कि यदि युवा लगभग जाग जाए तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है और गौरव का स्थान प्राप्त कर सकता है। श्रोता साथियों, स्वामी विवेकानंद का प्रारंभिक जीवन हमें यह सिखाता है कि महान व्यक्तित्व अचानक नहीं बनते, वे संस्कार, अध्ययन, अनुशासन, जिज्ञासा, सत्य और निरंतर सीखने की प्रक्रिया से निर्मित होते हैं। श्रोता साथियों, जिज्ञासु नरेंद्रनाथ दत्त से लेकर विश्व विख्यात सन्यासी स्वामी विवेकानंद बनने तक का सफर श्रोता साथियों हमें यह संदेश देता है कि यदि मनुष्य के भीतर सीखने की इच्छा, सत्य के प्रति निष्ठा और समाज के प्रति कुछ करने का संकल्प हो श्रोता साथियों, तो वह अपने जीवन को ही नहीं श्रोता साथियों बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य को बदल सकता है।
0: बिल्कुल मनीषा, स्वामी विवेकानंद महिलाओं को समाज की आधारशिला मानते थे। वे कहते थे कि जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। वे महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान के प्रबल समर्थक थे। श्रोता साथियों, स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। यदि कोई व्यक्ति भूखे को भोजन देता है, बीमार की सहायता करता है, गरीब बच्चों को शिक्षा देता है या किसी दुखी व्यक्ति का सहारा बनता है तो वही सबसे बड़ी पूजा होती है। आज समाज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तनाव, बेरोजगारी, नशे की समस्या, सामाजिक दूरी, मोबाइल की लत, नैतिक मूल्यों में गिरावट। ऐसे समय में मनीषा, स्वामी विवेकानंद के विचार पहले से भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उनका संदेश हमें सिखाता है कि आत्मविश्वासी बनो, मेहनत करो, दूसरों की सहायता करो, अपने देश और समाज के प्रति जिम्मेदार बनो, अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो, तभी हम देखेंगे कि हमारा जो आज का समय है वो सही तरीके से हम जी पाएंगे।
1: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट कहा था कि धर्म का उद्देश्य लोगों को बांटना नहीं है बल्कि श्रोता साथियों जोड़ना है। उन्होंने कट्टरता, संकीर्णता, हिंसा और धार्मिक दृढ़ता को मानवता का सबसे बड़ा शत्रु बताया। उनका मानना था कि मनुष्य अपने धर्म का पालन करते हुए अगर दूसरे धर्मों का सम्मान करे तो संसार में शांति और सद्भावना स्थापित की जा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने विश्वास से यह कहा कि प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और सेवा ही सच्चे धर्म के आधार होते हैं। श्रोता साथियों, आज जब दुनिया में कई प्रकार के संघर्ष और मतभेद से जूझ रहा है तब उनका संदेश है वो हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
0: बिल्कुल मनीषा, स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई यानी आज के दिन 1902 को हुआ था। उनकी पुण्यतिथि केवल श्रद्धांजलि देने का दिन नहीं है श्रोता साथियों, यह दिन हमें याद दिलाता है कि महान लोग शरीर से भले ही चले जाते हैं लेकिन उनके विचार सदियों तक समाज का मार्ग दर्शन करते रहते हैं। यदि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रोता साथी, स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उनकी युवा पीढ़ी, उनका चरित्र और उनकी मानवीय संवेदनाएं होती है। उन्होंने हमें सिखाया है कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं बल्कि समाज के उत्थान में दिए गए योगदान से मापी जानी चाहिए। उनका जीवन त्याग, ज्ञान, सेवा, साहस और आत्मविश्वास का ऐसा उदाहरण है जो हर पीढ़ी को नई दिशा देता रहेगा। आज जब हम उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं तो श्रोता साथियों, उनके चित्र पर हमें पुष्प अर्पित करने तक सीमित चीजों को नहीं रखना है बल्कि उनके विचारों को अपने व्यवहार में उतारने का संकल्प लेना है। अपने परिवार, गाँव, विद्यालय और समाज में शिक्षा, समानता, सेवा, अनुशासन और सकारात्मक सोच का वातावरण बनाना है। युवाओं को नशे, निराशा से दूर रखकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने के प्रति प्रेरित भी करना है। महिलाओं का सम्मान करें, गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, यही राष्ट्र हित का सर्वोपरि कार्य है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद युवाओं को किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। उनका विश्वास था कि यदि युवाओं के भीतर आत्मविश्वास, अनुशासन, राष्ट्र प्रेम के प्रति उनका प्रेम जाग जाए तो श्रोता साथियों, देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वे युवाओं से कहते थे, अपने भीतर की अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और पूरी निष्ठा से प्राप्त करने का संकल्प लो। वे बार बार ये प्रेरणा देते थे साथियों कि मनुष्य को कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं। अंजलि जी, उनका मानना था कि केवल शारीरिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, मानसिक दृढ़ता, नैतिक चरित्र और सकारात्मक सोच भी श्रोता साथियों उतनी ही हमारे लिए जरूरी होती है। वे चाहते थे कि भारत का युवा ज्ञानवान होने के साथ साथ संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक भी बने।
0: बिल्कुल मनीषा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अत्यंत शक्ति छिपी है, आवश्यकता केवल उस शक्ति को पहचानने, उसे सही दिशा देने और मानवता की भलाई में लगाने की है। यदि हम ऐसा कर सके तो न केवल हमारा जीवन सार्थक होगा बल्कि हमारा समाज और हमारा देश भी अधिक सशक्त, जागरूक और विकसित बन पाएगा।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चल ही रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुख करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि को लेकर। यहीं अगर अंजलि जी हम बात करें कि चरित्र निर्माण को वो कैसे महत्व देते थे, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होती है वो उसका चरित्र है। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकती है, इसीलिए उन्होंने शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण को भी सबसे अधिक महत्व दिया है। साथ ही हम देखते हैं कि उनका विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने चरित्र को मजबूत बनाए तो परिवार, समाज और राष्ट्र स्वतः ही सशक्त बन जाएंगे। साथ ही श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य के भीतर पहले से मौजूद श्रेष्ठ गुणों का विकास करना था। वे ऐसी शिक्षा चाहते थे जो व्यक्ति को आत्मविश्वास दे, आत्मनिर्भर बनाए, सोचने की शक्ति दे, निर्णय लेने की क्षमता दे, साथ ही श्रोता साथियों वो खुद का विकास कर सकें और आगे बढ़े।
1: बिल्कुल मनीषा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बहुत सारी शक्तियां छिपी होती हैं। आवश्यकता केवल उस शक्ति को पहचानने, उसे सही दिशा देने और मानवता की भलाई में लगाने की है। यदि हम ऐसा कर सकें तो न केवल हमारा जीवन सार्थक होगा बल्कि हमारा समाज, हमारा देश भी अधिक सशक्त, जागरूक और विकसित बनेगा।
0: बिल्कुल,
1: इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं श्रोता साथियों जो केवल अपने समय के लिए नहीं बल्कि आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के मार्गदर्शक बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही महान विभूति थे। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास, ज्ञान की प्यास, अनुशासन और समाज के प्रति समर्पण हो तो यह असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव बना सकता है।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने भारत को उसकी आध्यात्मिक विरासत का बोध कराया और साथ ही यह भी समझाया कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि हर पीड़ित, वंचित, जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में आशा का दीप जलाने का नाम है। आज जब पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है तब स्वामी विवेकानंद के विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। आज के युवाओं को केवल डिग्री नहीं बल्कि सही सोच, अच्छा चरित्र, नैतिकता, नेतृत्व क्षमता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की आवश्यकता है।
0: जी हाँ,
1: यदि युवा अपने समय का सदुपयोग करें, नशे और नकारात्मकता से दूर रहें, नई तकनीक का उपयोग करें, समाज हित के लिए कई सारी चीजों का प्रयास करें और अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदारी से प्रयास करें तो न केवल श्रोता साथियों वे अपने परिवार का बल्कि पूरे देश का भविष्य बदल सकते हैं। यही संदेश स्वामी विवेकानंद अपने पूरे जीवन के माध्यम से हमें देते आए हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि मनुष्य का जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है, जीवन का श्रोता साथियों वास्तविक सार्थकता तब होती है जब हमारे कर्म है वो दूसरों के लिए प्रकाश, दूसरों के जीवन में प्रकाश और आशा का संचार करें। उन्होंने कर्म योग को आध्यात्मिक जीवन को ही आधार माना है। उनके अनुसार श्रोता साथियों, कर्म योग का अर्थ ही निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाना।
1: जी हाँ।
0: किसी के स्वार्थ फल की इच्छा किए बिना श्रोता साथियों समाज और राष्ट्र के लिए अपना काम करना। उनका विश्वास था कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों को ईमानदारी, समर्पण और उत्कृष्टता के साथ करे तो कार्य पूरा अवश्य हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: वे कहते थे कि केवल विचार ही समाज नहीं बदल सकते बल्कि अच्छे कर्मों में परिवर्तन आना भी बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे केवल बड़े सपने न देखें बल्कि उन्हें पूरा करने का सांस रखें और साथ ही परिश्रम करें।
1: बिल्कुल मनीषा, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक रोचक घटना है जो हम हमारे श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद एक बार वाराणसी में भ्रमण कर रहे थे।
0: जी हाँ।
1: एक दिन वे एक सकरी गली से गुजर रहे थे। उस रास्ते पर बहुत सारे बंदर थे। जैसे ही वे आगे बढ़े बंदरों ने उन्हें घेर लिया। कुछ बंदर जो थे घुर्राने लगे और कुछ उनके पीछे दौड़ पड़े। स्वामी विवेकानंद जी पहले तेजी से चलने लगे लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए बंदर और अधिक आक्रामक होते गए। तभी सामने से एक वृद्ध सन्यासी ने ऊंची आवाज में कहा, भागो मत, रुक जाओ और उनका सामना करो। यह सुनकर स्वामी विवेकानंद तुरंत रुक गए। वे पूरी दृढ़ता और निडरता के साथ बंदरों की ओर मुड़े और उनकी आंखों में देखने लगे। उनका आत्मविश्वास देखकर बंदर धीरे धीरे पीछे हटने लगे और कुछ ही क्षणों में वहां से चले गए। इस छोटी सी घटना ने स्वामी विवेकानंद के मन पर गहरा प्रभाव डाला। बाद में वे अपने भाषणों में इस घटना का उल्लेख करते हुए कहा करते थे कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कभी मत भागो, उनका साहस के साथ सामना करो। जब तुम डर कर भागते हो तो समस्या तुम्हारा पीछा करती है लेकिन जब तुम उनका सामना करते हो तो वे स्वयं पीछे हट जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें हमें सीख देती है कि डर किसी भी समस्या को बड़ा बना देता है, आत्मविश्वास और साहस कठिन परिस्थितियों को आसान कर देता है, और चुनौतियों से भागने के बजाय उनका समाधान खोजने का हमें प्रयास करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है दोस्तों जो विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक जीवन से अपना जीवन जोड़कर देखा। उनके अनुसार आध्यात्मिक होना श्रोता साथियों संसार से भागना नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना और अपने मन की शुद्धता को पहचानना है।
1: बिल्कुल,
0: वे कहते थे कि आध्यात्मिक मनुष्य है वो संतुलित रहता है, उसमें अहंकार कम होता है, सहनशीलता बढ़ती है और जीवन में शांति बनी रहती है। उन्होंने ध्यान, आत्मचिंतन, संयम और मानसिक स्वास्थ्य का आधार माना है। आज हम देखते हैं कि तेज रफ्तार और तनावपूर्ण जीवन शैली ने उनके विचारों को और भी उपयोगी बना दिया है हमारे लिए।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, यही स्वामी विवेकानंद का एक और रोचक तथ्य है जो हमें बताता है कि भारत की गरिमा से कभी समझौता हमें नहीं करना है। श्रोता साथियों, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका और यूरोप की यात्रा पर थे तब एक बार रेल यात्रा के दौरान कुछ विदेशी यात्री उनके भगवा वस्त्र और भारतीय पहनावे को देखकर उनका मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लगा कि यह साधु अंग्रेजी नहीं जानता होगा, इसलिए वे उसके बारे में अपमानजनक बातें कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी पूरी ट्रेन में शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो वे बहुत ही शुद्ध और प्रभावशाली अंग्रेजी में स्टेशन मास्टर से आवश्यक जानकारी लेने लगे। यह देखकर वे विदेशी यात्री हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनमें से एक ने स्वामी जी से पूछा कि जब हम आपका मजाक उड़ा रहे थे तब आपने हमें रोका क्यों नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुराकर बोला कि मित्र, मूर्ख लोगों से मेरा सामना पहली बार नहीं हुआ है। यदि मैं हर आलोचना का उत्तर देने लगूं तो अपने उद्देश्य से भटक जाऊंगा। उनका उत्तर सुनकर सभी लोग शर्मिंदा हो गए। उन्होंने स्वामी जी से क्षमा मांगी और उनके व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित हुए। श्रोता साथियों, यह घटना हमें सीख देती है कि अपने ज्ञान और संस्कार का प्रदर्शन हमेशा क्रोध से नहीं बल्कि व्यवहार से करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: अपमान का उत्तर हमेशा अपमान ही नहीं होता है, कभी कभी शालीनता सबसे प्रभावशाली उत्तर बन जाती है। अपनी संस्कृति और पहचान पर गर्व करना चाहिए और सच्चा महान व्यक्ति अपने कर्मों से लोगों का सम्मान जीतता है, बहस करके नहीं जीत पाता। ये घटना हमें कहती है श्रोता साथियों कि स्वामी विवेकानंद केवल महान वक्ता ही नहीं थे बल्कि धैर्य, आत्मसम्मान और भारतीय संस्कृति के सच्चे प्रतिनिधि भी थे।
0: जी हाँ,
1: शांत गरिमामय व्यवहार ने विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई भी दी थी।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से रूबरू हो पा रहे हैं, यही आपको कहना चाहेंगे कि आज जब पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है, तब स्वामी विवेकानंद के विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं।
1: जी हाँ
0: मनीषा, आज के युवाओं को केवल डिग्री नहीं बल्कि सही सोच, अच्छा चरित्र, नैतिकता, नेतृत्व क्षमता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की आवश्यकता है। यदि युवा अपने समय का सदुपयोग करे, नशे और नकारात्मकता से दूर रहे, नई तकनीक का उपयोग समाज हित में करें और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से प्रयास करें, तो वे न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे देश का भविष्य बदल सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: यही संदेश स्वामी विवेकानंद अपने पूरे जीवन के माध्यम से हमें देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कभी भी निराशा को जीवन का हिस्सा नहीं बनने दिया। उन्होंने हर व्यक्ति में छिपी संभावनाओं को पहचानने की प्रेरणा दी। उनका विश्वास था कि किसी भी समाज का विकास तब तक अधूरा है जब तक उसमें शिक्षा, समान अवसर, महिला सम्मान, सामाजिक समरसता और सेवा की भावना का विस्तार न हो। इसलिए उनकी पुण्यतिथि हमें केवल उनके जीवन को याद करने का अवसर नहीं देती बल्कि आत्ममंथन का भी अवसर देती है। हम अपने जीवन और समाज में कितना सकारात्मक परिवर्तन ला पा रहे हैं, इन सारी चीजों को भी हमें देखना होगा। और आज ही श्रोता साथियों, हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम अपने बच्चों को केवल सफल नहीं बल्कि संस्कारी, संवेदनशील नागरिक बनाएंगे। अपने गाँव समाज में भी शिक्षा, स्वच्छता, सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे और महिलाओं को समान अवसर देंगे और उस कार्य में भागीदारी निभाएंगे जिसमें समाज मजबूत और राष्ट्र समृद्ध बने। यही स्वामी विवेकानंद के सपने के भारत की और हमारा छोटा सा लेकिन सार्थक कदम होगा। इन सारी बातों के माध्यम से आज के दिन हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के लिए सेवा केवल दान देना नहीं था। वे मानते थे कि किसी को शिक्षा देना, किसी की समस्या सुनना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, पर्यावरण की रक्षा करना, समाज में सद्भावना बनाए रखना, अपने कर्तव्य की निष्ठा को निभाना श्रोता साथियों सबसे बड़ी सेवा है। उनका संदेश था कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों के जीवन को सकारात्मकता लाए। छोटी सेवाएं मिलकर श्रोता साथियों बड़े परिवर्तन को प्रत्यक्ष कर सकती हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि आज दुनिया तकनीकी रूप से बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन तनाव, अकेलापन, हिंसा, असहिष्णुता, पर्यावरण संकट, नैतिक मूल्यों का ह्रास जैसी समस्याएं हैं, वो अंजलि जी बढ़ रही हैं। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद जी के विचार एक संतुलित मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। उनका जीवन श्रोता साथियों हमें सिखाता है, विकास केवल आर्थिक नहीं होना चाहिए बल्कि नैतिक और मानवीय भी होना चाहिए। विज्ञान और आध्यात्मिकता, प्रगति और संस्कृति, सफलता और सेवा, इन सभी के बीच संतुलन हमारे लिए वास्तविक विकास का मार्ग बन सकता है।
0: बिल्कुल मनीषा, हर युग को ऐसे महान पुरुषों की आवश्यकता होती है जो केवल अपने विचारों से ही नहीं बल्कि अपने जीवन के उदाहरण से समाज को सही दिशा दिखाए। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही युग दृष्टा थे जिन्होंने यह सिद्ध किया कि एक जागरूक, शिक्षित और आत्मविश्वासी, चरित्रवान व्यक्ति पूरे राष्ट्र के भविष्य को बदलने की क्षमता रखता है।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने भारत को आत्मगौरव का संदेश दिया और दुनिया को यह बताया कि भारतीय संस्कृति केवल प्राचीन परंपराओं का संग्रह नहीं है बल्कि मानवता, सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व का जीवंत दर्शन है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है श्रोता साथियों कि बड़े सपने देखने के साथ साथ उन्हें पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम, अनुशासन और निरंतर सीखने की भावना भी आवश्यक है। उन्होंने युवाओं को केवल सफलता का नहीं मनीषा बल्कि उद्देश्य पूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाया।
1: उनके
0: विचार आज भी शिक्षा, सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण जैसे हर क्षेत्र में समान रूप से प्रेरणा देते हैं। और यही कारण है कि समय बदलने के बावजूद उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रभावशाली है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में श्रोता साथियों सिद्ध कर दिया कि मानवता ही नहीं श्रोता साथियों बल्कि विचार, कर्म और चरित्र भी हमें प्राप्त करने होंगे। उन्होंने भारत को आत्मविश्वास दिया, युवाओं को उद्देश्य दिया, समाज को सेवा का मार्ग दिखाया और विश्व को महानता का संदेश दिया।
0: बिल्कुल,
1: उनकी वाणी श्रोता साथियों आज भी हमें प्रेरित करती है, उनके विचार आज भी मार्गदर्शन हमें देते हैं और उनका जीवन आज भी विश्वास दिलाता है। एक जागरूक, चरित्रवान और निस्वार्थ व्यक्ति पूरे समाज की दिशा को बदल सकता है।
0: जी हाँ मनीषा, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना। हम जान पाए कार्यक्रम के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर उनके जीवन परिचय को। आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को हम कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे, ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को।
1: नमस्कार साथी श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम के होस्ट कशिश पारशर। स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसे कि दोस्तों, हम जब भी कार्यक्रम आपकी फरमाइश को लेकर हाजिर होते हैं तो आपको आपके ही पसंदीदा नगमों से रूबरू करवाते हैं, जो आप हमें व्हाट्सएप SMS माध्यम से भेजते हैं श्रोता साथियों। तो आज भी ये सिलसिला हमारा आपसे बना रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश का सिलसिला सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक चलता है, तो आज भी ये सिलसिला बना रहेगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश के माध्यम से। दोस्तों, अब जैसा कि कार्यक्रम में ढेर सारी फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो मैं बढ़ना चाहूँगी पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आई है बाटापारा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है साथियों चांदनी। गीत के बोल हैं, तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा। फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ रहे सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, विदय जोशी, अंकिशा जोशी, अंकिता जोशी, नागपुर से रीमा जोशी, अमृता जोशी, किरण शर्मा, आशीष कुमार शर्मा जी, और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। पंडरपुर से हैं जाखिल मलानी, सुबयान सलमा, मुमताज दिलसाद, नसर भी, भानु भी, बादशाह मुलानी। पंडरपुर सिटी से हैं रोहिदास चौक से प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशा सिंह, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी, और भी दोस्त इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी श्रोता साथियों, अकोला से हैं शिशिला देवी मुंदुरकर, सदानंद मुंदुरकर, कुमार गौरव मुंदुरकर, यवतमाल से निशा रानी नागरिकर, नीलेश नागरिकर, आरावर पिताजी। तो आइए साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत।

स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसे कि दोस्तों, फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम में शुरू हो चुका है और बहुत ही प्यारा सा गीत अभी हमने फरमाइश का सुना, तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मित्वा। इसी गीत के बाद श्रोता साथियों, फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश आई है टटेरी बागपत से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों खुदा गवाह। गीत के बोल हैं, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं बागपत से, आसिफ अली खान, मोमिन अनास, मुस्कान सातिफ, सादिक अली खान, सारिक अली खान और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। बागपत से ही हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधर नूतन, भुवनेश्वरी देवी जी, दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी। इसी बीच जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से भी चिलोक चंद्र वर्मा, बागवंत वर्मा, सीमा वर्मा, अभिषेक वर्मा, अमित वर्मा, सचिन वर्मा, समर राज आर्यन, आरोही ऐशिका, श्वेता वर्मा जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है पद्मा चौर टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है श्रुता साथियों, जूली। गीत के बोल हैं, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। इस गीत को आवाज़ दिए किशोर कुमार जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहे सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभिजी शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन जी शाह, अर्जुन शाह, सुषमा कपूर जी। मजनू का टिल्ला से हैं कमल बालोजा, मधु बालोजा, सागर बालोजा, उमा मलिक, आकांक्षा मलिक। और भी हमारे दोस्त जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से ही हैं नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, संवेद अब्बासी, यशव अब्बासी और सुहेल हसन अब्बासी। इसी बीच कश्मीर से जुड़ रहे हैं फैजरा मिजारुद्दीन, नजमुद्दीन, क्वासिरुद्दीन। श्रोता साथियों, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं उदयन पाल, जहीन पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और समस्त बघेल परिवार सदस्यगण। हरियाणा से हैं जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमरजीत कौर। इसी बीच रतलाम एमपी से जुड़ना चाह रहे हैं हमारे श्रोता साथी, जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जगदीश धाकड़, नायमा, रंजूभाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, इसी प्यारे से गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। साथियों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है नवाशहर से। फिल्म का नाम है मैं आपको बताना चाहूंगी। गीत के बोल हैं श्रोता साथियों, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, और फिल्म का नाम है इश्क। बताना चाहूंगी फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं सुरेंद्र साधु, अनिता साधु, रोहित साधु, रितेश साधु, शिक्षा साधु, प्रतीक्षा साधु और मेक्स जी। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी लखनपुर छत्तीसगढ़ से हैं, विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं जो पसंद करते हैं इसी गीत को। रघुवीर नगर दिल्ली से हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलियाज नायब और लड्डू जी। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं बोड़खेरा पित्रामल से हैं विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा कुश मुड़त जी। छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति, प्रहलाद वर्मा, मुरली, अमित वर्मा। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आए बिलानगर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है श्रुता साथी और राजा गीत के बोल है किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। इस गीत को आवाज दी अलका याग्निक जी, उदित नारायण जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहे अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, आसमा श्याम कुमार, दीपक श्याम कुमार, अनुशी श्याम कुमार और भी दोस्त हमारे बीच जुड़ना चाह रहे हैं। कोका बिलाई से ही हैं उत्तम सिंह जंगेल, मुरार जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल, नंदनी जंगेल। सुगरी कला से अमित, शकुन, आशिका, आयुषी जंगेल, अजित कसना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना ये लदावली से जुड़ना चाह रहे हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं गुणवंत शिवास, करुणा शिवास, आयुष श्रीवास, विवेक शिवास, बेबी आशीष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनित राज, सुमित सोमू, मानस राज और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ से हैं फिनेश कुमार चंदन, सविदी देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविकारिणी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हियांश कुमार चंदन। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश किस गीत को। गीत के बोल हैं झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है श्रोता साथियों, बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है परदेस, गीत के बोल हैं मेरी महबूबा। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे गंज द्वारा से शमशल कमर राय, शाइन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान अंसारी, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं करनाल से हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इश्पी शर्मा, सुहानी शर्मा, किरण ठाकुर जी। अमरावती से हीरामन शिंदे, शीला देवी शिंदे, सिद्धार्थ कोणाने, अर्चना ताई कोणाने जी। महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं बंडू लोहार पोपलगढ़, माया शिवान, चंद्रकला पोपलगढ़, देवीदास पोपलगढ़। नेहरू चौक पैटर्न से सुरेश यादव, नीता यादव, आरती प्रसाद, सोनल यादव, बीबीसिया यादव, यादव परिवार सदस्य गण। जलाना शहर से हैं सोमनाथ यादव, गीता ओम, सुभाष चंदन, एकनाथ संगीता यादव। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मण मल्होत्रा, लाडो कौल मल्होत्रा, नानक चल मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुक्कू भाविका सिक्का। और भी साथी जुड़ रहे हैं सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंद्र शर्मा, सार्थक सचिन शर्मा, रोहित शर्मा जी। मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, सपिल धाड़े, अजय खिरोडकर। महाराष्ट्र से जुड़ रहे नंद किशोर गट्टे, संगीता गट्टे, साक्षी गट्टे, जयश्री महतरे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय डोहल, पीपी कुलथे जी। दादी गेट भिमानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं मेरी महबूबा।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी, दुलोपुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है श्रद्धा साथियों तुमसे अच्छा कौन है, गीत के बोल हैं आँख है भरी भरी। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इरकाज नजगिस खातून जी, और भी जुड़ रहे हैं पटेल नगर मोलद से रमेश कुमार जजोरिया, गितने जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोर, गुड्डू जी, और भी दो जुड़ना चाह रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टर, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो जी। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं, सहारनपुर से हैं सैयद मसूर, साइना आसा, नाजमा आफिया, इब्राहिम सद्दाम और आदिब अली जी। दोस्तों, कुरावली से हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा जी। और भी दोस्त हमारे बीच जुड़ना चाह रहे हैं बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, आशिक संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान और डुग्गू जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार और ईशान छिपा। कुमार गली गोलगांव से हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग कुमार जी। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं आंख है भरी भरी। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।
1: आंसू पी के भी जो मुस्कुराए वही तो जमाने को जीत पाए।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारेशर के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है हरिद्वार से। फिल्म का नाम है मोहब्बत। एक गीत के बोल हैं, आंखें खुली हो या हो बंद। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने और उदित नारायण जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है श्रोता साथियों ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रहे मेरा अब जहां। और भी साथी जुड़ना चाह रहे बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबांजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। बुलडाणा से जुड़ना चाह रहे नारायण हगे, कमला हगे, दिव्या हगे, जय हगे जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे महाराष्ट्र से बाबा साहेब कणककर, साखरबाई कणककर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणी ईश्वर और कणककर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। डाबकी रोड अकोला से जुड़ना चाह रहे हैं शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, आंखें खुली हो या हो बंद। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।
1: चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजुटवारा से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत की बोल है एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत की फरमाइश करते हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान जी अंसारी और भी श्रोता सती जुन्नाचारी, कुंभार गले श्री रामपोसी, अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, सविता दले, जीविका दले, सानिका जी दले, पुनावली पुणे से जुड़ रही अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, विशाखा सोनवने जी और अविका सोनवनी। इससे भी जुन्नाचारी, दुर्गा कुलनी, हांसी सिंह, राजू मिलकानी, बबीता मिलकानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। कलानौर से जुन्नाचारी ही नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। जाफराबाद से जुड़ रही हैं सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, सचिन वायल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सरवत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना जी देशमुख। आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना, गीत के बोल थे एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अमरावती सिंह। फिल्म का नाम है लावारिस। गीत के बोल हैं, काहे पैसे पे इतना गुरूर करें। इस गीत की फरमाइश करता है श्याम कीटी, वंदना कीटी, भाविका जी कीटी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोर्ड जी इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं। पुरावली से साइद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नूरीन अंसारी, आंसना अंसारी, मोहम्मद फेकजी अंसारी। इस गीत के अनुरोध करता है झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत जी और सादिया जी। इस बीच जुड़ना चाह रहे भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणिवर्मा, पारस मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है जाखोत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है, काहे पैसे पे इतना गुरूर करें। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में है।

दोस्तों अभी हमने किशोर कुमार जी की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे काहे पैसे पे इतना गुरूर करे रे। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है सोतन। गीत के बोल ही जिंदगी प्यार का गीत है। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है इमकेश्वर शाहू, करण शाहू, राहुल शाहू, चंपाजी शाहू। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाच पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से जुड़ रही नाशिश शेख, नाजिया नाशिश, शाहिद शेख। अहमदनगर से जुड़ना चाह रही हैं सुमित मुजावर, सभिया मुजावर, मिखाइल मुजावर और जुमेब जी मुजावर। पंडेरिया छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती जी बघेल। इसे भी जुड़ना चाह रहे नवाशहर पंजाब से गंगदीप थांदी, दीप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बीबी वामिका और वानी जी थांदी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही जिंदगी प्यार का गीत है।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनुरी तेलीवाला से। फिल्म का नाम है प्रेम रोग, गीत के बोल ही भवरे ने खिलाया फूल। इस गीत को आवाज़ दी है लता जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है निसार सलमानी, नौसा सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सूरज गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार शाहू, योगेश शाहू, राहुल जी शाहू। इस गीत के अनुरोध करता है झारखंड से अब्बास आलम, अमजल अली, लाडली निशा। पटियाकला दुर्ग से जुड़ रहे हैं सुजीता शाहू, शशंक शाहू, सीमाजी शाहू और संजय शाहू। इसे भी जुड़ना चाह रहे श्रीरामपुर से डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका, सोनू कुम्भार, अर्चना कुम्भार। पुनावली से जुड़ रहे हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, शाइशाजी सोनवने। सिंधी बुजुर्ग से जुड़ना चाह रहे हैं किशोर वडतकर, शुभम वडतकर, पन्नू जी वडतकर। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं भंवरे ने खिलाया फूल। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजुटवारा से। फिल्म का नाम है हमराज, गीत के बोल हैं तुम अगर साथ देने का वादा करो। इस गीत की फरमाइश करता है यासीन हाशमी, बेगम हाशमी, तौसीफ जी, तोइनूर जी और कलीम अंसारी जी। इसे भी चुनना चाह रहे हैं लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। इस गीत के अनुरोध करता है बदायूं से रिशद खान, शायरा खान, रफियू खान, सावरीन बेगम, शाहबाज खान, सेफ खान, ईशान खान, अजम खान, अरफान खान। इस गीत के अनुरोध करता है हिंगोली महाराष्ट्र से सहाय जी, नंदा जी, हनुमान जी और उत्तम कुमार जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं कोरबा छत्तीसगढ़ से नरेंद्र प्रताप मरकाम, जगेंद्र गजेंद्र और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भवानी नगर पेठण से अरुण, आरती, भाऊ साहेब, गंगा सागर, हर्षवर्धन, राशि, कार्तिक और परिजी। जमशेदपुर से जुड़ना चाह रहे हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। इसे भी जुड़ना चाह रहे छत्रपति शिवाजी नगर से राजेश सामले सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षयजी सेन। सरगांव छत्तीसगढ़ से जुड़ रही दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांजी वर्मा। मलियाना सरधाना मेरठ से जुड़ रही हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन। सरधाना मेरठ से जुड़ रही हैं आदि जैन, अंश जैन, भव्य जी जैन। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं दिल्ली से तुलसी मस्किन, बीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रजिता खुराना, केशु खुराना, रिधांशी खुराना। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं तुम अगर साथ देने का वादा करो। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मस्तानपुरा से। फिल्म का नाम है हीरो, गीत की बोल ही तू मेरा जानू है। इस गीत की फरमाइश करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, भागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी जी इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं, तिरोगिरी से जसवीत कौर, महप्रीत कौर, सहज कौर, अमरावती से जुड़ना चाह रहे हैं सिद्धार्थ गुड़ानी, अर्चना गुड़ानी, हीरामन शिंडे, प्रणय प्रसिद्धि जी। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणव श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, आयुष श्रीवास, बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो और मानस जी राज। इसे भी जुड़ना चाह रहे बरका काना से अफ्ताब ताज, साइन सुल्तान, सोनू तस्नीम, निप्पी सोहेनी, अफ्ताब मलिक जी। इस गीत के अनुरोध करता है बुलढाणा महाराष्ट्र से समर्थन पाटिल, भगवान पाटिल, श्रीमती लक्ष्मीबाई पाटिल, सानिका जी पाटिल। पंजाब से जुड़ रहे हैं बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू गीता श्रीवास, रंजन शाह, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। साथी जुड़ना चाह रहे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास, रंजन शाहू जी। इस गीत के अनुरोध करता है बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से जुड़ना चाह रहे हैं सोनम सिंह, अनामिका जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, बीबी वेदई जोशी, हंसिका जी जोशी, कुमारी अंकिता जोशी। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ रही हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल रश्मि, प्रियंका सृष्टि बन्नी, आरुष शौर्या, दिनेश जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही तू मेरा जानू है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

तो साथियों, ये थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज की शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को बुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे, मीठी यादें, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर हमारे अगले एक खास और रंगों से भरे कार्यक्रम घूमर की ओर, क्योंकि साथियों, राजस्थान की संस्कृति में घूमर केवल एक लोक नृत्य नहीं, बल्कि नारी की खुशी, सम्मान और परंपरा का सुंदर प्रतीक है। इसी परंपरा और नारी शक्ति को समर्पित है हमारा ये विशेष कार्यक्रम घूमर, जहां महिलाओं से जुड़ी बातें, उनकी प्रतिभा, अनुभव और जीवन की प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचाई जाती है। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं, इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे, और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे गजल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़ियां सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागड़ रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: आज के सुविचार।
1: जब सागर का जल वाष्प बनकर उड़ता है तब वो हमें दिखाई नहीं देता, मेघ उस जल को अपने भीतर छिपा लेते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो जल

हम सत्य अपने मन के मेघों में चाहे जितना छिपाने का प्रयास कर लें, परंतु समय की आंधी उसे वास्तविकता के पर्वत से ले जाकर के टकरा कर हमारे समक्ष ले ही आती है, जिस भय के कारण आप सत्य को सामने नहीं लेकर आना चाहते। एक दिन वही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस भय का सामना करने की तैयारी नहीं की होती। इसलिए सत्य से भागे नहीं, उसे छिपाए भी नहीं, उसे स्वीकार करें, भविष्य की बड़ी विपत्ति से बच जाएंगे। कभी कभी आप सबके जीवन में एक ऐसी विचित्र समस्या अवश्य आती है कि शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाते, उस शक्तिशाली से विवाद करने से बचने के लिए आप मौन रह जाते। मानता हूं ऐसा करने से आप एक विवाद से बच जाते, एक संघर्ष से बच जाते, परंतु ऐसा बचाव एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। कैसे? हमारा मौन रहना अनजाने में उसका समर्थन बन जाता है और वो स्वयं को अधिक शक्तिशाली अनुभव करता है, और यहां से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते। तो इसका तोड़ क्या है, ये समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको विरोध करने से रोकती है। ये सामने वाले की शक्ति नहीं जो आपको रोकती है, ये आपके भीतर छिपा भय है जो आपको रोकता है। हाँ, कभी कभी भय आपकी सुरक्षा अवश्य कर सकता है, परंतु साथ साथ ये भी जानना आवश्यक है कि ये भय ही है जो आपको मौन भी रखता है। इसलिए अपने मन से भय को निकालो और खुलकर अनीति का, अन्याय का विरोध कीजिए, और फिर देखिएगा आपका मन कितना मुक्त, कितना

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व अनुकरो भोजन
1: होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है स्वामी विवेकानंद जी के विचार और आज के युवाओं को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि कशिश, भारत की युवा शक्ति को जागृत करने वाले महान संत, विचारक और प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। उनका जीवन और उनके विचार आज भी युवाओं को नई दिशा प्रदान करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास, साहस, चरित्र निर्माण, राष्ट्र सेवा और मानवता का संदेश दिया। आज का युग तकनीक प्रतिस्पर्धा और तेज बदलाव का युग है।
0: जी जी,
1: ऐसे समय में युवाओं के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। उन्हें सही मार्गदर्शन, सकारात्मक सोच और मजबूत व्यक्तित्व की आवश्यकता है।
0: बिल्कुल,
1: स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज भी युवाओं के लिए उतने ही प्रासंगिक है जितने उनके समय में थे। तो
0: जी
1: आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही जानने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के विचार और आज के युवा के बारे में।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो बातें ढेर सारी होंगी आज के इस कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम कार्यक्रम का पहला गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के विचार और आज के युवाओं को लेकर। जैसा कि जागृति जी, हम सभी जानते हैं कि भारत एक युवा देश है। आज हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी ही है। श्रोता साथियों, युवाओं के पास ऊर्जा है, सपने हैं, नई सोच है और बदलाव लाने का साहस भी है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इन सभी बातों में सच ये भी है साथियों कि आज का युवा कई चुनौतियों से घिरा हुआ है। बेरोजगारी, मानसिक तनाव, सोशल मीडिया की लत, करियर की चिंता, प्रतियोगिता का दबाव और जीवन में सही दिशा का अभाव। जागृति जी, ये सभी समस्याएं युवाओं के सामने खड़ी हैं। ऐसे समय में यदि किसी महान व्यक्तित्व के विचार युवाओं को सही राह दिखा सकते हैं तो उनमें स्वामी विवेकानंद का स्थान सबसे ऊपर है।
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, उन्होंने केवल आध्यात्मिकता की बात नहीं कही है, बल्कि आत्मविश्वास, शिक्षा, अनुशासन और मानव सेवा जैसे मूल्यों को जीवन का आधार बताया है। और उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने 100 वर्ष पहले थे साथियों।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। वे बचपन से ही जिज्ञासु थे, प्रतिभाशाली थे और साहसी थे। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था।
0: बिल्कुल।
1: वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भारतीय संस्कृति और सनातन दर्शन का परिचय पूरी दुनिया को कराया। उनके भाषण ने भारत का गौरव बढ़ाया और विश्व को मानवता तथा भाईचारे का संदेश दिया।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके युवाओं के हाथ में होता है। वे युवाओं को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। कशिश
0: जी जी,
1: उनका प्रसिद्ध कथन था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो।
0: बिल्कुल।
1: ये संदेश आज के युवाओं के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है और समर्पण की जरूरत है।
0: जी हाँ।
1: और जो युवा अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहते हैं वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते ही है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का युवा जानकारी से भरपूर है लेकिन कई बार सही दिशा से दूर वे हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: उनके पास साधन तो है लेकिन धैर्य कम है। अवसर है जागृति जी, लेकिन आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है। इसलिए श्रोता साथियों, स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें ये सिखाता है कि यदि व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान ले तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता।
1: बिल्कुल।
0: स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास होता है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करते हैं जागृति जी, वही कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ पाते हैं।
1: जी हाँ।
0: दोस्तों, आज प्रतियोगी परीक्षाओं, नौकरी और करियर की दौड़ में कई युवा छोटी सी असफलता से निराश हो जाते हैं। ऐसे समय में जागृति जी, स्वामी विवेकानंद जी का संदेश हमें याद दिलाता है कि असफलता अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर होती है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी आत्मविश्वास को सफलता की पहली सीढ़ी मानते थे। उनका कहना था कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता वो ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकता।
0: बिल्कुल।
1: आज के युवा असफलता, तुलना और सामाजिक दबाव के कारण आत्मविश्वास खो बैठते हैं। विवेकानंद जी का भी संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति मौजूद है।
0: बिल्कुल।
1: आवश्यकता केवल उसे पहचानने और विकसित करने की है। जब युवा अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीख जाते हैं तब वे जीवन की कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना भी कर सकते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारी युवा साथियों से बात कर ही रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार है वो हमारे युवा साथियों के लिए किस प्रकार से प्रेरणादायक है, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी स्वामी विवेकानंद जी के विचार और आज के युवाओं को लेकर। यही जानते हैं कशिश की शिक्षा का सही उद्देश्य क्या है।
1: श्रोता
0: साथियों, स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्त करने का साधन नहीं मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा वो है जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है, मन की शक्ति को बढ़ाती है और उसे आत्मनिर्भर बनाती है। आज की शिक्षा व्यवस्था में अंक और प्रतियोगिताओं पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, लेकिन यदि शिक्षा के साथ नैतिकता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का विकास न हो कशिश, तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। युवाओं को ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जो उन्हें अच्छा इंसान बनाने में सहायता करे।
1: बिल्कुल, इसी के साथ दोस्तों उनका कहना था कि जीवन में लक्ष्य का स्पष्ट होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन दिशाहीन हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: आज जागृति जी हम देखते हैं कि कई युवा बिन योजना के केवल दूसरों की नकल करते रहते हैं। कोई दोस्त अगर उनका इंजीनियर बन रहा है तो वे भी वही रास्ता चुन लेते हैं। कोई सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध हो रहा है तो वे भी उसी दिशा में चल पड़ते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में विवेकानंद जी का जीवन उन्हें ये सिखाता है कि अपने गुणों को पहचान कर लक्ष्य तय करें और पूरे निष्ठा से उसकी ओर बढ़ते रहें। दोस्तों, उनके अनुसार शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं थी बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का एक माध्यम थी। आज डिग्रियां बढ़ रही हैं लेकिन व्यवहार, नैतिकता और जिम्मेदारी जैसे गुण कम होते जा रहे हैं। जागृति जी, युवाओं को ऐसी शिक्षा अपनानी चाहिए जो उन्हें अच्छा इंसान भी बनाए, और केवल सफल पेशेवर उनके लिए काफी नहीं होता है, ये भी उन्हें जानना चाहिए।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, स्वामी विवेकानंद भाग्य से अधिक कर्म पर विश्वास करते थे। आज के समय में कई युवा जल्दी सफलता तो पाना चाहते हैं जागृति जी, लेकिन हर बड़ी उपलब्धि के पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन और धैर्य छुपा होता है, ये बात वे भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र होता है। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र व्यक्ति को हमेशा सम्मान दिलाता है।
1: बिल्कुल,
0: आज के समय में हम देखते हैं कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों का महत्व पहले से और अधिक बढ़ गया है। युवा यदि अपने जीवन में अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों को अपनाएंगे तो वे स्वयं के साथ समाज को भी बेहतर बना सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कहा भी गया है कि चरित्रवान युवा ही राष्ट्र की असली ताकत होते हैं।
1: जी जी
0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को चुनौतियों से भागने के बजाय उनका सामना करना सिखाया कशिश।
1: जी हाँ,
0: वे कहते थे कि संघर्ष ही व्यक्ति को मजबूत बनाता है। आज के युवा पढ़ाई, रोजगार, प्रतियोगिता और भविष्य को लेकर बहुत सारे दबावों का सामना करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे समय में उन्हें निराश होने के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। हर चुनौती अपने साथ सीखने और आगे बढ़ने का अवसर लेकर आती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अगर हमारे युवा साथियों को हम बताएं तो स्वामी विवेकानंद जी ने महिलाओं की शिक्षा और सम्मान में भी समर्थन दिया है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, उन्होंने कहा है कि जिस समाज में महिलाओं का सम्मान होता है वही समाज आगे बढ़ता है।
0: जी हाँ,
1: उन्होंने श्रोता साथियों अपने जीवन से जुड़े ढेर सारी बातें हमें बताई है, जैसे कि हमें प्रतिदिन एक लक्ष्य तय करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपनी जीवन शैली में योग और व्यायाम को शामिल करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा श्रोता साथियों ऐसा भी बताया गया है कि आज पर्यावरण संरक्षण युवाओं की जिम्मेदारी है। ऐसे में पेड़ लगाना, जल बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और स्वच्छता बनाए रखना राष्ट्र सेवा का एक रूप है। जागृति जी,
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि मानव सेवा को भी ईश्वर सेवा मानते थे वो। उनका मानना था कि गरीब, कमजोर और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म होता है।
1: बिल्कुल,
0: आज हम देखते हैं कि समाज में अनेक लोग आर्थिक और सामाजिक मानसिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। युवा यदि सेवा, सहयोग और करुणा की भावनाओं को अपनाएंगे तो समाज और अधिक संवेदनशील और मजबूत बन जाएगा।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, हम कहना चाहेंगे आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कि यदि स्वामी विवेकानंद जी आज हमारे बीच होते तो वे युवाओं से कहते कि अपने भीतर की शक्ति को जरूर पहचानो, लक्ष्य निर्धारित करो, अनुशासन को अपनाओ और समाज तथा राष्ट्र के लिए कार्य करें। वे युवाओं को केवल सफल नहीं बल्कि उपयोगी और जिम्मेदार नागरिक बनाना सिखाते हैं।
1: जी हाँ,
0: उनका जीवन हमें बताता है कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन विचार और कर्म इतने बड़े हो सकते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें याद रखे।
1: बिल्कुल,
0: आज का युवा यदि विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन में उतार लेगा तो वे स्वयं के साथ समाज और देश का भविष्य भी बदल सकता है।
1: जी हाँ जागृति जी, तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों से ये कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद केवल एक सन्यासी नहीं थे साथियों, बल्कि युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे।
0: बिल्कुल,
1: उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उनके समय में थे। यदि आज का युवा जागृति जी आत्मविश्वास, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति जैसे मूल्यों को अपने जीवन में अपनाए तो वह न केवल अपने सपनों को पूरा कर सकता है बल्कि समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथियों, आज आवश्यकता बस इस बात की है कि हम युवा केवल सफलता के पीछे न भागें, बल्कि अपने व्यक्तित्व का भी विकास करें। ज्ञान के साथ संस्कार, तकनीक के साथ नैतिकता और सपनों के साथ जिम्मेदारी, यही स्वामी विवेकानंद का संदेश है साथियों।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का अमूल्य स्रोत है। उन्होंने आत्मविश्वास, शिक्षा, चरित्र, सेवा, राष्ट्र प्रेम और मानवता का जो संदेश दिया वो हर युग में प्रासंगिक रहेगा। आज जब युवा अनेक चुनौतियों और अवसरों के बीच खड़े हैं, तो विवेकानंद जी के विचार उन्हें सही दिशा दिखा सकते हैं। श्रोताओं, आवश्यकता सिर्फ इस बात की कि हम केवल उनके विचारों को नहीं पढ़े बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारें। जब युवा आत्मविश्वासी, चरित्रवान, अनुशासित और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित बनेंगे तब भारत वास्तव में एक सशक्त और विकसित राष्ट्र बनेगा। इसीलिए उन्होंने हमेशा यही कहा है कि उठो, जागो और आगे बढ़ो। विवेकानंद जी के जो सपने हैं वो भारत में करो। इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम के साथ हम विदा लेना चाहेंगे श्रोताओं, क्योंकि समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल जागृति जी।

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसपड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है, अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है।
2: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थई जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बोन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा की नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर माता की चिंता भी है और हर बच्चे के स्वस्थ भविष्य की सबसे मजबूत नींव भी है।
0: बिल्कुल,
1: आज का हमारा कार्यक्रम का विषय है बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के सरल उपाय को लेकर। कहा जाता है श्रोता साथियों कि स्वस्थ बचपन ही उज्जवल भविष्य की पहली पहचान है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन आज का समय पहले जैसा नहीं रहा। बदलती जीवन शैली, भागदौड़ भरी दिनचर्या, बढ़ता प्रदूषण, पैकेट वाले खाद्य पदार्थ, मोबाइल और टीवी का बढ़ता उपयोग और खुलकर खेलने के जो घटते अवसर है, इन सब ने बच्चों की सेहत पर गहरा प्रभाव डाला है।
0: जी हाँ,
1: यही कारण है कि आज बहुत से माता पिता ये शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा बार बार सर्दी, खांसी, बुखार और संक्रमण का शिकार हो जाता है। अक्सर ऐसी स्थिति में हम तुरंत दवा की ओर ध्यान देते हैं, लेकिन श्रोता साथियों क्या कभी हमने ये सोचा है कि यदि बच्चे के शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली मजबूत हो तो वह कई बीमारियों से खुद ही लड़ सकता है। आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के क्या तरीके हैं और हम उन्हें कैसे अपना सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी होंगी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन शुरुआत में पहले सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।
1: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के सरल उपाय क्या हो सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, जैसा कि आपने गीत से पहले कहा ही था कि यदि बचपन स्वस्थ होता है तो भविष्य भी मजबूत होता है, और एक तरीके से देखा जाए तो ये बात सत्य भी है श्रोता साथियों। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आज बदलते जीवन शैली के कारण हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर कई चुनौतियां खड़ी हुई है। देखते हैं कि बच्चे पहले की तरह घंटों तक नहीं खेल पाते हैं, मिट्टी से वे नहीं जुड़े हुए हैं, और घर का ताजा भोजन उन्हें

0: इतना मजबूत बनाना होगा कि वे स्वयं कई बीमारियों का सामना कर सके।
1: बिल्कुल कशिश, यही शक्ति होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये हमारी शरीर की वह प्राकृतिक सुरक्षा है श्रोता साथियों, जो वायरस, बैक्टीरिया और अन्य संक्रमणों से लड़ने में मदद करती है। यदि यह मजबूत होगी श्रोता साथियों, तो बच्चा केवल कम बीमार नहीं पड़ेगा बल्कि अधिक सक्रिय, ऊर्जावान और खुश भी रहेगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी महंगी दवा या चमत्कारी टॉनिक से नहीं बनती। यह हमारे घर की रसोई, हमारी दिनचर्या, हमारी अच्छी आदतों और परिवार के सकारात्मक वातावरण से धीरे धीरे विकसित होती है।
0: बिल्कुल,
1: यही बात आती है कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण क्या है। तो श्रोता साथियों, जब कोई बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इसके पीछे केवल मौसम या संक्रमण ही जिम्मेदार नहीं होते। कई बार हमारी छोटी छोटी आदतें भी बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देती है।
0: बिल्कुल,
1: आज के समय में बच्चों की दिनचर्या पहले जैसे नहीं रही है। सुबह जल्दी उठना, बाहर खेलना, समय पर भोजन करने की जगह अब देर रात तक मोबाइल देखना, सुबह देर से उठना, जल्दी जल्दी कुछ भी खा लेना आम बात हो गई है और ये धीरे धीरे बच्चों के शरीर पर असर डालती है। दूसरा कारण है असंतुलित खानपान। कई बच्चे कशिश घर के पौष्टिक भोजन की बजाय चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, पिज्जा और बर्गर जैसे खाद्य पदार्थ अधिक पसंद करने लगे हैं।
0: बिल्कुल,
1: स्वाद में तो अच्छे होते हैं लेकिन शरीर को पोषण नहीं दे पाते जिसकी उसे आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, ऐसे में श्रोता साथियों, अब यहाँ पर बात करते हैं कि स्वच्छता की आदतें रोगों से बचाने में कैसे मदद कर सकती हैं। तो साथियों, कई बार हम ये सोचते हैं कि स्वच्छता का मतलब केवल साफ कपड़े पहनना या घर की सफाई करना होता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अंजलि जी, वास्तव में स्वच्छता बच्चों को बीमारियों से बचाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। हम देखते हैं कि बच्चों को बचपन से ये सिखाना चाहिए कि खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है।
1: जी जी
0: दोस्तों, हमारे हाथों पर मौजूद अदृश्य कीटाणु भोजन के साथ शरीर में पहुंचकर कई बीमारियां पैदा कर सकते हैं, ऐसा हम अपने बच्चों को बताएं। बच्चों के नाखून समय समय पर काटना, रोज स्नान करवाना, साफ कपड़े पहनना, साफ पानी पीना और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है अंजलि जी।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी इसी तरह बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि कशिश गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कुछ कारण होते हैं, साथ ही हम स्वच्छता की आदतों के बारे में जान पाए।
1: बिल्कुल,
0: बात आती है बच्चों के दैनिक आहार में कौन कौन से खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। श्रोता साथियों, एक पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन वैसा ही तन। यह बात बच्चों पर सबसे अधिक लागू होती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि बचपन वह समय होता है कशिश जब शरीर तेजी से बढ़ रहा होता है, मस्तिष्क का विकास हो रहा होता है और अब शरीर अपने रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित कर रहा होता है। ऐसे में यदि भोजन संतुलित और पौष्टिक होगा तो बच्चों का शरीर भी मजबूत बनेगा।
1: जी,
0: आज की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कई बच्चे स्वाद को पोषण से अधिक महत्व देने लगे हैं। यदि उन्हें घर की दाल रोटी सब्जी या खिचड़ी दी जाए तो वे नाक सिकोड़ने लगते हैं, लेकिन चिप्स बर्गर और ये सारी चीजें खाने में उन्हें बड़ी खुशी आती है।
1: बिल्कुल,
0: ये आदत धीरे धीरे शरीर को कमजोर करने लगती है। इसलिए माता पिता को केवल बच्चों की पसंद नहीं बल्कि उनकी सेहत को भी प्राथमिकता देनी चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथियों में बच्चों के भोजन में रोजाना मौसमी फल जरूर शामिल करने चाहिए, जैसे कि आम अमरूद संतरा पपीता केला सेब या जो भी फल मौसम में उपलब्ध हो। साथियों
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि वे शरीर को जरूरी विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं। विशेष रूप से विटामिन सी युक्त फल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं अंजलि जी।
0: जी हाँ,
1: यही बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक मेथी सरसों चौलाई और अन्य मौसमी सब्जियां बच्चों की थाली का नियमित हिस्सा होने चाहिए। इनमें आयरन फोलिक एसिड और कई आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं साथियों, जो हमारे बच्चों के शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और इसी के साथ अगर बात करें तो दालें भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं अंजलि जी कि दालें जैसे कि चना राजमा लोबिया सोयाबीन और अंकुरित अनाज जो होते हैं वो बच्चों को पर्याप्त प्रोटीन देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और साथियों प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार हम दूध दही छाछ और पनीर भी बच्चों के आहार में शामिल कर सकते हैं, इससे बच्चों की हड्डियों के साथ साथ उनकी संपूर्ण सेहत को भी फायदा मिलता है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से ये हम जान पाए कि हमें बच्चों के खान पान में किन किन चीजों को शामिल करने की जरूरत है। यही अब बात आती है कि माता पिता बच्चों में स्वस्थ जीवन शैली की आदतें कैसे विकसित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: श्रोता साथियों, बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए केवल समझाना काफी नहीं होता, उन्हें दिखाना भी पड़ता है। बच्चे किताबों से कम और अपने माता पिता को देखकर अधिक सीखते हैं। यदि घर के बड़े स्वयं स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे तो बच्चे भी धीरे धीरे वही आदतें अपना लेंगे। सबसे पहले परिवार में एक नियमित दिनचर्या बनानी चाहिए। समय पर उठना, समय पर भोजन करना और समय पर सोना, ये साधारण लगने वाली आदतें ही अच्छे स्वास्थ्य की नींव है।
1: बिल्कुल,
0: माता पिता को कोशिश करनी चाहिए कि दिन में कम से कम एक समय पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन करें। इससे बच्चों में अच्छे खान पान की आदत विकसित होती है और परिवार के साथ संवाद भी बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को रोज कुछ समय खुले वातावरण में खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। श्रोता साथियों, खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि शरीर को मजबूत बनाने, तनाव कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने का माध्यम है।
1: बिल्कुल,
0: आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती स्क्रीन टाइम की है। यदि माता पिता स्वयं हर समय मोबाइल में व्यस्त रहेंगे तो बच्चों से मोबाइल छोड़ने की उम्मीद करना कठिन होगा। इसलिए पूरे परिवार को मिलकर स्क्रीन के उपयोग के नियम बनाने होंगे।
1: जी हाँ अंजलि
0: जी, पर्याप्त नींद मिलना आवश्यक है। अच्छी नींद शरीर को आराम देती है, मस्तिष्क तरोताजा रखती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों, माता पिता को चाहिए कि वो भी इन सारी चीजों को अपनाए ताकि बच्चे उन्हें देखकर इन सारी चीजों को अपने जीवन में अपना।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये कहना चाहेंगे कि बच्चों का स्वास्थ्य केवल आज की जरूरत नहीं है बल्कि आने वाले कल की सबसे बड़ी पूंजी है।
0: बिल्कुल
1: अंजलि जी, एक मजबूत शरीर और स्वस्थ मन किसी भी बच्चे को जीवन की हर चुनौती का सामना करने का साहस देगा। इसलिए बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना केवल बीमारी से बचने के प्रयास नहीं है बल्कि उनके संपूर्ण विकास में किया गया एक दीर्घकालिक निवेश है साथियों।
0: जी जी,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर हम बच्चों के लिए अच्छे कपड़े अच्छे स्कूल और बेहतर सुविधाओं का इंतजाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन कई बार वही छोटी छोटी बातें नजरअंदाज कर देते हैं साथियों जो उनके स्वास्थ्य की असली नींव होती है।
0: बिल्कुल,
1: समय पर भोजन पर्याप्त नींद खुलकर खेलना स्वच्छता का पालन करना घर का पौष्टिक खाना खाना और परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते हुए समय बिताना, ये सभी श्रोता साथियों ऐसी अनमोल आदतें हैं जिन्हें कोई दवा या टॉनिक कभी नहीं दे सकती।
0: बिल्कुल, तो कशिश जैसा कि इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पाए कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए हमें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ दिले जी।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं कार्यक्रम से। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, पावर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। नमस्कार।

तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पेरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे, सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे, स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वक्त रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी एक ऐसे विषय को लेकर बातचीत रहने वाली है जो हमारे घर, हमारे गांव, हमारे शहर और हमारे भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: विषय है कचरा प्रबंधन, जो कि स्वच्छ भविष्य की कुंजी है। जब हम विकास की बात करते हैं अंजलि, तो अक्सर बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें और आधुनिक सुविधाओं की चर्चा करते हैं, लेकिन किसी भी समाज की असली पहचान उसकी स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति उसकी जिम्मेदारी से होती है।
0: जी जी।
1: अगर हमारे पास कचरे के ढेर लगे हो, नालियां जाम हो और वातावरण प्रदूषित हो, तो विकास की चमक भी फीकी पड़ जाती है। इसलिए कचरा प्रबंधन केवल सफाई का विषय नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण का आधार है।
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें बनी रहेंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत के पहले गीत के साथ में क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को हम मनोरंजन करवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागर रेडियो 90.8।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कचरा प्रबंधन, जो कि स्वच्छ भविष्य की कुंजी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, अब यही बात आती है कि कचरा सिर्फ गंदगी नहीं, एक बढ़ती हुई चुनौती है। आज दुनिया तेजी से बदल रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और उपभोग भी बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ श्रोता साथियों, कचरे की मात्रा भी बढ़ती जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: पहले जो वस्तुएं वर्षों तक चलती थी, अब उनकी जगह एक बार उपयोग करके फेंक देने वाली चीजों ने ले ली है। इसका परिणाम जागृति जी ये हुआ है कि कचरे का पहाड़ लगातार ऊंचा होता जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: कचरे की समस्या केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों में भी प्लास्टिक, पैकेजिंग सामग्री और अन्य अपशिष्ट तेजी से

0: जी, स्वच्छ भविष्य किसी योजना का परिणाम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की अच्छी आदतों का परिणाम होता है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसके लिए हमें गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखने की जरूरत है। श्रोता साथियों, कचरा प्रबंधन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम ही यही है कि कचरे का हम पृथक्करण करें।
0: बिल्कुल,
1: गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखना एक छोटी सी आदत है लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही बड़ा होता है। श्रोता साथियों, गीले कचरे में रसोई से निकलने वाले जैविक पदार्थ आते हैं जबकि सूखे कचरे में प्लास्टिक, कागज, कांच और धातु जैसी वस्तुएं शामिल होती है। जब दोनों प्रकार के कचरे को जागृति जी हम अलग रखते हैं तो उसका पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण आसान हो जाता है। यदि हम यह छोटा सा कदम उठा लें तो कचरे का बड़ा हिस्सा लैंडफिल में जाने से बच सकता है और उपयोगी संसाधन में बदला जा सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी सबसे बड़ी भूल ये है कि हम कचरे को बेकार समझते हैं जबकि वास्तव में कचरे का सबसे बड़ा हिस्सा दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। रसोई का जैविक कचरा खाद बन सकता है, पुराना कागज नए कागज में बदल सकता है, प्लास्टिक और धातु का पुनर्चक्रण करके नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार श्रोता साथियों, कचरा केवल अपशिष्ट नहीं बल्कि एक मूल्यवान संसाधन है। जब हमारी सोच बदलेगी तभी व्यवस्था बदलती है। कचरे को बोझ नहीं बल्कि हमें अवसर के रूप में देखने की आवश्यकता है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि आज प्लास्टिक हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। बाजार से लेकर घर तक हर जगह प्लास्टिक का उपयोग देखने को मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: सुविधा के कारण श्रोता साथियों इसका उपयोग तो बढ़ गया है लेकिन इसके दुष्परिणाम उतने ही गंभीर है। प्लास्टिक वर्षों तक नष्ट नहीं होता, यह मिट्टी की उर्वरकता को प्रभावित करता है, जल स्रोतों को प्रदूषित करता है और पशु पक्षियों के जीवन के लिए खतरा बन जाता है।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, कई बार जानवर भोजन समझकर प्लास्टिक को खा लेते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहना चाहेंगे कि प्लास्टिक का विवेकपूर्ण उपयोग, उसके विकल्पों को अपनाना समय की आवश्यकता है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम कह सकते हैं कि कचरा केवल गंदगी नहीं फैलाता बल्कि अनेक बीमारियों को जन्म देता है।
1: बिल्कुल,
0: जहाँ कचरे के ढेर होते हैं वहाँ मच्छर, मक्खियाँ और अन्य कीट तेजी से पनपते हैं। हम कह सकते हैं कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और अन्य संक्रमणों का कारण ही ये मच्छर है। स्वस्थ समाज का निर्माण स्वच्छ वातावरण के बिना संभव नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम अपने आसपास सफाई बनाए रखते हैं श्रोताओं, तो न केवल बीमारियां कम होंगी बल्कि स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च भी कम होगा। स्वच्छता वास्तव में स्वास्थ्य की पहली शर्त है।
1: बिल्कुल,
0: तो जैसा कि अंजलि हम बात कर रहे हैं स्वच्छता को लेकर हमारे आज के इस कार्यक्रम में, ये बातें हमारी यूं ही बनी रहेंगी लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जागृति जी, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि स्वच्छता और स्वास्थ्य का अटूट संबंध कैसे है, यहीं अब बात आती है कि गांव में कचरा प्रबंधन की नई आवश्यकता क्यों है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, एक समय था जब गांव प्राकृतिक रूप से स्वच्छ हुआ करते थे। अधिकांश वस्तुएं जैविक होती थी और आसानी से मिट्टी में मिल जाती थी, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। गांव में भी पैकेट बंद सामान, प्लास्टिक की बोतलें और अन्य अपशिष्ट जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: यदि जागृति जी, इनके प्रबंधन का ध्यान नहीं दिया गया तो गांवों की प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छता प्रभावित हो सकती है। गांव में सामुदायिक स्तर पर कचरा संग्रहण, कंपोस्टिंग और जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि कचरा प्रबंधन केवल सरकारी व्यवस्था से सफल नहीं हो सकता। इसके लिए पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जब गांव की पंचायत स्वच्छता को प्राथमिकता देती है, नियमित सफाई की व्यवस्था करती है और लोगों को जागरूक बनाती है, तब सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगते हैं।
0: जी हाँ,
1: समुदाय की भागीदारी से स्वच्छता एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन बन जाती है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जब युवा किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं तो उनमें ऊर्जा है, नई सोच और परिवर्तन की क्षमता अपने आप आती है।
0: हाँ।
1: यदि युवा स्वच्छता अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा अंजलि, लोगों को जागरूक करेगा और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: आज आवश्यकता ऐसे युवाओं की है जो केवल शिकायत न करें बल्कि समाधान का हिस्सा बने।
0: बिल्कुल जागृति जी, कहा जा सकता है श्रोता साथियों से कि कचरा प्रबंधन का सबसे प्रभावी सूत्र है कम उपयोग, पुनर्उपयोग और पुनर्चक्रण। जो वस्तु आवश्यक नहीं है उसका उपयोग कम करें। जिन वस्तुओं का दोबारा उपयोग हो सकता है उन्हें फेंकने के बजाय पुनः उपयोग में लाएं, और जिन वस्तुओं का पुनर्चक्रण संभव है उन्हें सही प्रक्रिया तक पहुंचाएं। यदि यह संस्कृति समाज में विकसित हो जाए तो कचरे की मात्रा में भारी कमी लाई जा सकती है। श्रोता साथियों, आज विज्ञान और तकनीक ने कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में अनेक रास्ते खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: आधुनिक तकनीकों की मदद से कचरे से ऊर्जा बनाई जा सकती है, जैविक कचरे से खाद बनाई जा सकती है और प्लास्टिक को नए उत्पादों में बदला जा रहा है।
1: जी हाँ,
0: स्मार्ट तकनीकों का प्रयोग करके जागृति जी, कचरा संग्रहण और निपटान को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। यह भविष्य की जरूरत भी है और अवसर भी।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि बहुत से लोग कचरे को केवल समस्या मानते हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी बन सकता है। हम कह सकते हैं कि रिसाइकिलिंग उद्योग कंपोस्ट निर्माण, कचरा संग्रहण और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास भी संभव है। कचरा प्रबंधन हमें सिखाता है श्रोताओं की सही सोच के साथ हर चुनौती अवसर में बदली जा सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज हम जो कार्य करते हैं उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। यदि हम आज पर्यावरण की अनदेखी करेंगे तो श्रोता साथियों, भविष्य में हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ियां इसके दुष्परिणाम भुगतेंगे।
1: बिल्कुल,
0: स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और स्वच्छ वातावरण उनका अधिकार है। इसलिए श्रोता साथियों, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पृथ्वी को बेहतर स्थिति में आगे बढ़ाएं। अक्सर हम विशेष अवसरों पर सफाई तो करते हैं और फिर पुरानी आदतों में लौट आते हैं, लेकिन जागृति जी, वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब स्वच्छता हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है।
1: बिल्कुल,
0: स्वच्छता कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब यह सोच विकसित होगी तभी स्थायी परिवर्तन संभव होगा।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि सच्चे स्वराज की भावना केवल अधिकारों की बात नहीं करती बल्कि जिम्मेदारियों की भी बात करती है। यदि हर नागरिक अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेगा तो स्वच्छ और सुंदर भारत का सपना साकार हो जाएगा।
0: जी हाँ।
1: हमें समझना होगा श्रोता साथियों कि सड़क पर पड़ा कचरा केवल किसी और की समस्या नहीं है, वो हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब हम मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी का भाव अपनाएंगे तभी हम वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि कचरा प्रबंधन केवल सफाई का विषय नहीं है बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जिम्मेदारी का विषय भी है।
1: बिल्कुल,
0: ये हमारे वर्तमान को बेहतर बनाने के साथ साथ श्रोता साथियों, भविष्य को भी सुरक्षित करने का माध्यम है। सच्चा स्वराज तभी संभव है जब नागरिक जागरूक हो, समाज जिम्मेदार हो और विकास प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़े।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, हमें यह संकल्प लेना होगा कि अपने घर, अपने गांव, अपने मोहल्ले और अपने देश को स्वच्छ बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। याद रखिए कि स्वच्छ भविष्य किसी चमत्कार से नहीं बनेगा, वह हमारे आज के छोटे छोटे प्रयासों से बन पाएगा।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि सच्चा स्वराज केवल शासन की व्यवस्था का नाम नहीं है बल्कि जागरूकता, नागरिकों की जिम्मेदारी और सहभागिता का प्रतीक है।
0: बिल्कुल,
1: जब हम अपने घर, अपने आंगन, अपनी गली और अपने गाँव को स्वच्छ रखने का संकल्प लेते हैं तब हम केवल सफाई नहीं करते बल्कि एक बेहतर समाज और सुरक्षित भविष्य की नींव रखते हैं। याद रखिए श्रोता साथियों, कचरा अपने आप समस्या नहीं बनता, हमारी लापरवाही उसे समस्या बनाती है और वही कचरा हमारी समझदारी, जागरूकता और सही प्रबंधन से एक उपयोगी संसाधन भी बन सकता है। आज आवश्यकता किसी एक व्यक्ति, संस्था या सरकार के प्रयास की नहीं बल्कि पूरे समाज के सामूहिक संकल्प की है। हमें ये सोचना होगा कि हम कचरे को इधर उधर नहीं फैलाएंगे, गीले सूखे कचरे को अलग करेंगे, प्लास्टिक के उपयोग को कम करेंगे, अपने आसपास के लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि स्वच्छ वातावरण केवल हमारी जरूरत नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है।
0: जी जी।
1: एक स्वच्छ गांव, एक स्वच्छ शहर और एक स्वच्छ भारत का सपना तभी साकार होता है अंजलि, जब हर नागरिक ये कहे कि मैं बदलाव का इंतजार नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, मैं स्वयं बदलूंगी। इसी संदेश के साथ श्रोता साथियों, हमें स्वच्छता की आदत को अपनाना होगा, कचरा प्रबंधन को जन आंदोलन बनाना होगा और सच्चे स्वराज की भावना को मजबूत बनाना होगा।
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, अब इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे क्योंकि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथी, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। इसी उम्मीद और आशा के साथ आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम घूमर हमर वावरिया मर हित्ते बोने ने आपनी बोन मनीषा ने आपनी बोन अंजलि नु
1: राम राम।
0: होवे बोनो आप सब हमड़ी रिया हो अपड़ू सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत करे हैं हमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में।
2: होवे भाई बोनो लेने हाजिर थी गये हैं कार्यक्रम घूमर ने लेने एक नया विषय ने हाथे। मनीषा बोन आज अपने बहन बोनो ते की बातचीत नु विषय है कि प्रसव ने बाद माँ की देखभाल केम जरूरी है।
0: होवे
2: आपड़े देखो हो के अक्सर आ बातें जो है ये कम चर्चा में आवे हैं। सोरन ने जन्म ने बाद है तो जो परिवार है ये केवल नवजात शिशु ने देखभाल में लाकी सा है, पर कोई इनी माने वारा में कोई विचार नहीं करतु कि इन्हें देखभाल अपना ने हरते करवी है। क्योंकि आप देखो हो कि स्वस्थ माँ स्वस्थ सोरो ने खुशहाल परिवार ने नेव कहवा है। तो आज आप ये जानूंगा कि प्रसव ने बाद जो माँ रहे है इनने देखभाल की जरूरत केम पड़े है ने આપણા ને એની દેખભાલ હરતે કરવી સુવે।
0: હવે અંજલિ બોન તો આના વિશે માતે આપણે ભાઈ બોને કદી ઘણા કાની વાતે રીંગા અબર હામળા આગીત ને મોરે કર આપણી વાતે।
2: હવે તો ભાઈન બોનો આપ હામળતા રહેજો આપણો રેડિયો આપણી વાતે વાગડ રેડિયો 90.8 FM માતે।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

साथियों, कई लोग उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो उनके पास नहीं है, और इसी भाग दौड़ में वे उस खुशी को खो देते हैं जो पहले से उनके पास होती है। जी हाँ, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अक्सर उन चीजों की कीमत तब समझते हैं जब वह हमसे दूर हो जाती है।

साथियों, कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों के उड़ान में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यदि इसे गहराई से समझ लिया जाए तो यह जीवन की दिशा बदल सकता है। आज का विषय है, जो हमारे पास है उसकी कद्र करना क्यों जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जीवन में कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। बेहतर नौकरी, अधिक पैसा, बड़ा घर, नई सुविधाएं, अधिक सफलता, ये सभी इच्छाएं स्वाभाविक हैं और आगे बढ़ना गलत नहीं, सपने देखना भी गलत नहीं है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम जो नहीं मिला उसी पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और जो मिला उसकी अहमियत भूल जाते हैं। इसी के साथ इंसान की आदत, यानी कि जो नहीं है उसी पर नजर की बात करें तो यदि किसी व्यक्ति के पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल चाहता है, जिसके पास मोटरसाइकिल है वह कार चाहता है और जिसके पास कार है वह और बड़ी कार चाहता है, और यह इच्छा का अंतहीन सिलसिला यूं ही चलता रहता है। दोस्तों, इच्छाएं बुरी नहीं है, लेकिन वे हमें वर्तमान की खुशियों से दूर कर दे तो वे बोझ बन जाती है। कई बार हम अपने जीवन की अच्छाइयों को इतना सामान्य मान लेते हैं कि उसकी कीमत भूल जाते हैं। इसीलिए किसी ने बहुत बड़ी बात कही है कि जो हमारे पास है वह किसी दूसरे व्यक्ति का सपना भी हो सकता है। इसलिए कृतज्ञता के भाव के साथ हमें हमारे जीवन जीना है। ये क्यों जरूरी है? तो श्रोता साथियों, कृतज्ञता यानी कि जो मिला है उसके प्रति धन्यवाद का भाव। जब हम अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं ना साथियों, तो महसूस कर पाते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। जैसे कि परिवार का प्यार, अच्छे मित्र, स्वस्थ

लेकिन श्रोता साथियों, हम ये भूल जाते हैं कि हम किसी की पूरी कहानी नहीं देख रहे होते, केवल उसका एक चमकदार सा हिस्सा देख रहे होते हैं। तुलना हमें उस खुशी से दूर कर देती है जो हमारे पास पहले से मौजूद है। यानी कि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि तुलना का खेल ऐसा है जिसमें जीतने वाला भी कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए जब परिवार साथ होता है तब उसकी मौजूदगी सामान्य लगती है। माँ की चिंता, पिता की सलाह, भाई बहनों की नोक झोंक, बुजुर्गों का स्नेह, ये रोजमर्रा की बातें लगती हैं। लेकिन जब परिस्थितियाँ बदलती है ना श्रोता साथियों, तो दूरी पड़ती है और कोई अपना साथ छोड़ देता है। तब एहसास होता है कि हमारे पास कितनी बड़ी दौलत थी। इसलिए अपने लोगों की कद्र तब कीजिए जब वे आपके साथ हैं, क्योंकि रिश्तों की कीमत बैंक बैलेंस से नहीं नापी जाती। वे जीवन की कठिन समय में अपना मूल्य खुद साबित करते हैं। बहुत से लोग श्रोता साथियों, धन कमाने में इतना आजकल व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तब उन्हें समझ में आता है कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं है, स्वस्थ शरीर है। जो व्यक्ति स्वस्थ है वह जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य की कदर कीजिए, क्योंकि दोस्तों जिस जीवन को हम जी रहे हैं और जिस जीवन में हम इतनी सुविधाओं को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें अगर हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो हम उस जीवन को अच्छे से नहीं जी पाएंगे। इसलिए सारी चीजों के बीच में संतुलन बनाकर हमें हमारे जीवन को जीने की जरूरत है। तो बातें जैसा कि कार्यक्रम में बहुत अच्छी हमारी आपसे चल रही हैं, आगे भी यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी मन कर रहा है आप सभी को एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवाने का। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

किस्से हैं बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं।

साथियों, गीत से पहले जैसा कि हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि मनुष्य जो है अपने पास जो होता है उसकी कद्र नहीं करता और बाद में उसे पछतावा होता है। अब यही बात करें कि छोटी खुशियों की अहमियत क्या है, तो कई लोग बड़ी खुशियों का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जीवन केवल बड़ी उपलब्धियों से नहीं बनता। जीवन बनता है सुबह की ताजी हवा से, परिवार के साथ समय बिताने से, परिवार के साथ भोजन करने से, किसी बच्चे की मुस्कान से, किसी मित्र की सच्ची बात से, तो किसी की मदद करने के सुख से। श्रोता साथियों, जो व्यक्ति छोटे खुशियों को पहचान लेता है वह जीवन को अधिक गहराई से जी पाता है। वो कहते हैं ना कि जीवन की सबसे सुंदर चीजें अक्सर मुफ्त होती हैं, लेकिन हम उन्हें सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। संतोष का श्रोता साथियों अर्थ ये नहीं है कि हम हमारे सपने ही छोड़ दें, बल्कि वर्तमान की सुंदरता को पहचानना भी जरूरी है। जो व्यक्ति धन्यवाद कहना सीख जाता है वह शिकायतों का बोझ हल्का कर लेता है, क्योंकि इंसान जल्दी अभ्यस्त हो जाता है। जो चीज कल तक उसे खुशी देती थी वह आज सामान्य लगने लगती है। यही कारण है कि हमें समय समय पर रुक कर देखना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या क्या अच्छा है और क्या क्या बुरा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे भीतर संतोष और सकारात्मकता बढ़ती है, क्योंकि जीवन में सब कुछ कभी किसी को नहीं मिलता। हर व्यक्ति के पास कुछ कमियां होती है तो कुछ के पास खूबियां होती है। यदि हम केवल कमियों पर ध्यान देंगे तो दुखी रहेंगे, यदि हम उपलब्धियों और आशीर्वाद को भी देखेंगे तो जीवन अधिक सुंदर लगेगा। इसलिए दोस्तों, जीवन की वास्तविक समृद्धि केवल इस बात से तय नहीं होती है कि हमारे पास क्या है, कितना है, बल्कि इस बात पर तय होती है कि जो है उसकी कितनी कदर करते हैं। जो व्यक्ति हमेशा कमी पर ध्यान देता है वह बहुत कुछ पाकर भी असंतुष्ट ही रहता है, लेकिन जो व्यक्ति श्रोता साथियों अपने जीवन में मौजूद अच्छाइयों को पहचानता है वह सीमित संसाधनों में संतोष और खुशी पा लेता है। इसलिए सपने देखिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, लेकिन इस यात्रा में अपने वर्तमान को मत भूलिए। उन लोगों की कदर कीजिए जो आपके साथ हैं। अपने स्वास्थ्य की कदर कीजिए, अपने अवसरों की कदर कीजिए और उन छोटी छोटी खुशियों की कदर कीजिए श्रोता साथियों, जो हर दिन आपके जीवन को अर्थ देती है। क्योंकि कई बार हम जिस खुशी की तलाश दूर दूर तक करते हैं वह हमारे पास पहले से ही मौजूद होती है। एक प्यारी सी कविता आपको मैं सुनाना चाहूंगी दोस्तों, कि जो मिला है जीवन में उसका मान किया करो, हर छोटी सी खुशियों का सम्मान किया करो। हर दिन सूरज नई किरण लेके आता है, उम्मीदों का दीपक मन में जलता है। कल की चिंता में आज को न खोया करो, जो मिला है जीवन में उसका मान किया करो। माँ की ममता पिता का साया अनमोल है, अपने लोगों का साथ सबसे बेमोल है। रिश्तों को धन दौलत से ना तोला करो, जो मिला है जीवन में उसका मान किया करो। दो वक्त की रोटी भी किसी का सपना है, सिर पर छत होना भी बड़ा अपना है। छोटी छोटी बातों पर ना रोया करो, जीवन में जो मिला है उसका मान किया करो। हर किसी की राह में कुछ कमी रहती है, फिर भी जिंदगी मुस्कुराने को कहती है। शिकायतों का बोझ दिल पर न ढोया करो, जो मिला है जीवन में उसका मान किया करो। सुख दुख तो मौसम की तरह आते जाते रहते हैं दोस्तों, जीवन जीने के नए सबक सिखाते हैं। हर हाल में उम्मीद का दीप संजोया करो, जो मिला है जीवन में उसका मान किया करो। कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता, वक्त किसी के लिए कभी नहीं ठहरता। आज के पल को दिल से संजोया करो, जो मिला है जीवन में उसका मान किया करो। जो मिला है उस पर क्यों अफसोस करें, जो मिला है पहले उसका तो एहसास करें। कृतज्ञता से भर जाए जब मन का संसार, तब हर दिन लगेगा जीवन का त्योहार। इसलिए दोस्तों, जो मिला है जीवन में उसका मान किया करो, हर छोटी सी खुशियों का सम्मान किया करो। इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले दोस्तों आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही अब मैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेना चाहूंगी। कहना चाहूंगी कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां अक्सर उन चीजों में छिपी होती है जिन्हें हम सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। तो आज से ही हम सभी को ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें हर चीज को सामान्य नहीं समझना है और हमारे आसपास जो खुशियां मौजूद है उन्हें महसूस करके हमारे जीवन को यादगार बनाना है। तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम दोस्तों कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागतरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हम पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

तो साथियों, ये थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यही समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।